नमस्कार, FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है। श्रोताओं, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई 2026। श्रोताओं, प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र FM 103.5 MHz पर श्रोताओं प्रातः के 6 बजने को है। लीजिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में

0: द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाड़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र FM 103.5 MHz पर। श्रोताओं, प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। लीजिए, आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय सेवा प्रसारण केंद्र विविध भारती की ओर। सुनते हैं अनुप्रसारित कार्यक्रम वंदनवार चिंतन।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं, खुद पर विश्वास करो। सारी

ही शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण है। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 195। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ऐसी लाग।

की लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। भाग 10। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। आठ बजकर 15 मिनट पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा आज अभिनेता निर्माता आदित्य चोपड़ा पर। इसका पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सुन सकते हैं। 10 बजे सुबह पिटारा में आज के मेहमान सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। इस बातचीत का आज दूसरा भाग आप सुन सकेंगे। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12:05 पर दोपहर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली, इसके अंतर्गत सुनेगा संवाद और विकास के विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। और एक कप चाय का अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर सुनेगा कहानी पद्मश्री की राहीबाई सोमा पोपुरे, महाराष्ट्र की बीज माता। और सुनेगा मुझे कुछ कहना है, फोबिया से कैसे बचे। 4 बजे हेलो फरमाइश और 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 4 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा 7:00 से। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए। इनसे मिलिए में आज सुनिए गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का तीसरा भाग। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन जान बची, लेखन विष्णुदत्त गौड़ का और निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। 10 बजे छाया गीत सुनिएगा और 10:30 पर ढलती जाए रात। और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग 195।

समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

0: इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जानी मानी गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार, भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: भजन के आज कौन से रंगों से हम सबको सराबोर करेंगे, हमें जहाँ तक याद आ रहा है एक भजन, अगर आप कहें तो उसके बारे में अगर आप बताएं।
2: कौन सा आपको याद आ रहा है?
1: इतना तो करना स्वामी जब प्राण तल अच्छा से निकले,
2: बहुत सुंदर भजन है,
1: इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: जी हाँ, ये भजन बहुत साल पहले मैंने इंदुबेन धानक से सुना था, जो मुंबई में ही रहती थी, फिर देवलाली शिफ्ट हो गई थी। तो वो इस भजन को बिल्कुल आंख बंद करके तन्मयता से रोते रोते गाती थी, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी इसमें। तो वो भजन मैंने भी गाना शुरू कर दिया और जो इसे सुनते हैं वो सच में द्रवित हो जाते हैं, भजन इतना अच्छा है। सुनाता हूँ
1: जी, बिल्कुल।

0: फिर देवलाली शिफ्ट हो गई थी, तो वो इस भजन को बिल्कुल आंख बंद करके तन्मयता से रोते रोते गाती थी, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी इसमें। तो वो भजन मैंने भी गाना शुरू कर दिया और जो इसे सुनते हैं वो सच में द्रवित हो जाते हैं। भजन इतना अच्छा है, सुनाता हूँ
1: जी बिल्कुल।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं और ना भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर लगा। आपके भजन में अनूप जी, कला पक्ष और भाव पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें कुछ उदाहरण के तौर पर बताइए भाव पक्ष और कला पक्ष को।
1: कला पक्ष जो है वो संगीत है और भाव पक्ष जो है वो कविता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द प्रथम, नाद द्वितीय। जो कविता है वो सामने है, संगीत उसके पीछे है। यदि हम यूं ही आलाप लेते रहे तो उसका असर नहीं होता है, लेकिन वही आलाप हम शब्दों के साथ लें तो उसका असर हो जाता है।
0: जी,
1: ठुमक चलत रामचंद्र अगर गाएंगे तो लोगों को ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर सिर्फ आलाप में ठुमक चलत रामचंद्र गाएंगे तो उसका असर इतना नहीं होगा। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। तो वो हमारा भाव पक्ष है। शब्दों के माध्यम से हम भाव प्रस्तुत करते हैं और जो संगीत की निपुणता है उससे हम कला पक्ष को उजागर करते हैं, और जब दोनों साथ में मिलके लोगों तक पहुंचते हैं तो उसका असर स्वर्गीय होता है।
0: अनूप जी, बड़ी बढ़िया बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। और अब
1: हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला की ये थी दसवीं कड़ी, और अगली कड़ी के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर। सुनना न भूलिएगा संगीत सरिता।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जानी माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिएगा बस थोड़ा सा इंतजार।

0: अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुबह का तारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उषा मंगेशकर के आवाज में ये गीत। गीतकार हैं नूर लखनवी और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शबाब फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।

0: नास्तिक फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी प्रदीप की और संगीत निर्देशन सी रामचंद्र का था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

बूट पॉलिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें थीं, बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।

श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा प्रसारण केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं फिर 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपका और हमारा पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। श्रोताओं, फिल्म संगीत का पहला गीत है शराबी फिल्म से आवाज़ रहेगी आशा जी की और संगीतकार रहेंगे बप्पी लहरी।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला गीत है लावारिस फिल्म से। आवाज रहेगी किशोर कुमार की और गीतकार रहेंगे प्रकाश मेहरा। संगीतकार रहेंगे आनंद विरजी शाह और कल्याण जी विरजी शाह।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला गीत है लूटमार फिल्म से, आवाज़ रहेगी आशा जी की, गीतकार रहेंगे अमित खन्ना और संगीतकार रहेंगे राजेश रोशन।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला गीत है नमक हलाल फिल्म से। आवाज रहेगी आशा जी की और संगीतकार रहेंगे बप्पी लहरी, गीतकार रहेंगे प्रकाश मेहरा।

हिम्मत वाला, ये है फिल्म का नाम। आवाज़ रहेगी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीतकार इंदिवर और संगीतकार एक बार फिर बप्पी लहरी।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारे फिल्म संगीत का सफर यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रातः के 8 बजने को है, लीजिए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ

0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा

0: जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है शंभुनाथ कुर्मी।
1: जी जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस

0: मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। लीजिए सुनते हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय सेवा प्रसारण केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम त्रिवेणी।

0: नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।
1: बच्चे

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये माउंट आबू केंद्र एफ एम 103.5 MHz पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत का लोक रंग। कलाकार रहेंगी मांगी बाई।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

0: श्रोताओं, ये थी लोक संगीत की अंतिम प्रस्तुति कार्यक्रम लोकरंग में। कलाकार थी मांगी बाई। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.5 MHz पर। श्रोताओं, प्रातः के 9 बजने को है, लीजिए आप ले चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र। सुनते हैं प्रादेशिक समाचार हिंदी में, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आम जन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कल अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की। दोनों देशों ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्यन्मुखी रोड मैप देगी।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और

0: के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबैट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुम्बड़ गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनिकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
1: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने, हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो। और ये जब संभव है, जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाए।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक खेती और उन्नत तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री आज शाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। वे वहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे जालौर रेलवे स्टेशन से भुज, दिल्ली वाया भीलड़ी, जालौर, पाली, मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस रेल सेवा के जरिए जालौर पहली बार राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ेगा। ये ट्रेन अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, भीलड़ी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनवाल, मोदरान, जालौर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, जयपुर गांधीनगर स्टेशन, बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ये ट्रेन कल उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। इसके बाद इसे नियमित कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कल राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने जयपुर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ है, के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अधिवक्ता केवल न्यायालय में पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय की स्थापना, आमजन के अधिकारों की रक्षा और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पावटा में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कार्यालय के लोकार्पण और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि एक सफल

0: अधिवक्ता वही है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का हम सभी को पालन करना है, बचत करना हमारी परंपरा भी रही है।
1: मोदी जी का आह्वान आम जन के लिए है, जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, इसलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अपेक्षा अन्य देशों की, बड़े बड़े देशों में तेल के भाव, गैस की सप्लाई, उसके बनी से हम बहुत सुरक्षित स्थिति में। और मेरा सबसे अनुरोध है, हम सब मिलकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान की पालना करें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और थोड़े दिन बाद में जो घटनाक्रम में निपट जाएगा उन्हें सामान्य स्थिति।
0: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इसे लेकर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं।
2: गोडावण दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा गोडाउन संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं आज जैसलमेर शहर के उत्कृष्ट जैन भवन में गोडाउन दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि गोडाउन के संरक्षण के लिए जैसलमेर के रामदेरा व सुदासरी में विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां AI तकनीक से इनकी आबादी बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य पक्षी के सुरक्षित आवागमन के लिए रामदेरा में एक विशेष टनल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, गोडाउन दिवस को लेकर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र FM 103.5 MHz पर। श्रोताओं, प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। लीजिए आप ले चलते हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय सेवा प्रसारण केंद्र विविध भारती की ओर। सुनते हैं अनुप्रसारित कार्यक्रम चित्रलोक
4: का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ऋत्विक तलाशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से सजाया। एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिर से स्वागत आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में।

वीर ज़ारा फिल्म का गीत उदित नारायण के आवाज में आप सुन रहे थे, जावेद अख्तर के ये बोल थे। दोस्तों आज विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस है। दुनिया में हर जगह लोगों की भाषा बोली अलग है, खान पान पहनावा सब अलग है, उत्सव अलग ढंग से मनाए जाते हैं। हर जगह की संस्कृति और सभ्यता अलग होते हुए भी इन सब के बीच एक बात है जो सबको जोड़ती है, वो है इंसानियत और प्रेम। सब कुछ अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने की भावना, यही सुंदरता है। हमारा देश तो विविधताओं का अनुपम और अद्भुत संगम है। संग अच्छध्वम संग वदध्वम सम वो मनांसि जानताम, साथ चलें साथ बोलें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मन को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, सद्भाव और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। ये गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है मेरे बाप पहले आप।

0: उदित नारायण, श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मेरी बाप पहले आप। दोस्तों, आज आतंकवाद विरोध दिवस भी है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाने का उद्देश्य कि हमें एकता, भाईचारा और आपसी विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा ये देता है। आज का दिन आइए हम सभी मिलकर हिंसा और नफरत से दूर रहकर प्रेम, सद्भाव और शांति का संदेश फैलाएं, क्योंकि जब समाज और देश सुरक्षित रहता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। और अब एक संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ और समृद्ध रहिए और इजाजत दीजिए सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हट।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई

0: मोहब्बत भी है, कोई हसरत भी है, पास आना भी है, दूर जाना भी है, और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है, और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
1: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये।

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां

0: उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूरोस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है सर, बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
1: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
0: जी
1: अल्मोड़ा हुआ।
0: अरे गजब, पहाड़ों पर।
1: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यू नहीं
0: जी,
1: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
0: अच्छा।
1: तब तक शुरू नहीं हुआ था
0: जी।
1: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
0: जी, जी।
1: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब। तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
0: जी,
1: वो एक अलग अनुभव था
0: जी।
1: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। घूमने जाओ तो अलग बात है
0: जी,
1: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
0: अच्छा।
1: 86 में।
0: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
1: और वो भी सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अग्गे जी वहां पर रहे और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
0: बिल्कुल
1: यस। तो ये सब भी
0: उदय शंकर जी का
1: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
0: जी।
1: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
0: रहते कैसे।
1: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं
0: जी,
1: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
0: पहाड़ों
1: में कैसे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये था
0: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
0: जी,
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटोपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उस पे वो उस पैटर्न पे रहे और अलॉट होने का सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम।
0: बिल्कुल। और तब तो लंबी लाइनें हुआ करती थी,
1: लंबी लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटोपिल की थी वहां रहे और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना।

0: एंटोपिल से किंग सर्कल आना, वहां से पैदल,
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
1: हाँ,
0: में।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
0: हाँ,
1: ढाल लेता
0: तो फिर
1: है।
0: वो लोग अपने आप आपको उतार
1: जी,
0: देते हैं। तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे।
0: उतार तो
1: जी, तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहां लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी।
0: चरम पर थी। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
1: जी
0: जगजीत सिंह, पंकज उधास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त ये
1: बजाया करते थे
0: बजाया
1: उसको।
0: करते थे लोग। तो इतनी पॉपुलर, नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए, तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था। और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो और
1: बिल्कुल,
0: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा। और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार रहा,
1: बल्कि
0: बहुत
1: हमने उनको
0: प्यार।
1: बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
0: जी,
1: तब मैं
0: सही
1: था
0: सही।
1: नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में, युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जो
1: जी
0: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या
0: हाँ ना,
1: बात है,
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
1: पेडर रोड।
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
1: जी
0: मैं गया। और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे,
1: जी
0: रोज रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे।
1: जी
0: हाँ, वो उनका मिल जाना, फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूं।
1: वाह
0: वरना
1: वाह
0: अक्सर होता है
1: वाह,
0: कि रख के जाओ, देखता हूं, मैं करता हूं, सोचता हूं, बताता हूं,
1: जी जी
0: है ना,
1: जी जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूं।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे, ये
0: नहीं, ये जो जिंदगी की
1: जो
0: किताब है,
1: जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह
0: तो ये वो
1: वाह।
0: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने
1: और
0: गाई।
1: भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे एक हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो
1: हाँ
0: मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और
1: जी
0: वो गजल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती।
1: ओ हो,
0: तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और
1: जी जी जी
0: चलिए।
1: ये जो जिंदगी की किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: अगर ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, तो
1: वही
0: उसको
1: आप
0: हाँ वो पढ़ देता हूं एक।
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी की कि

सा ख्वाब है, कहीं जान लेवा अजाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही, बिल्कुल
0: और ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब मैं तो खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उस पर जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले थे, ये गजल थी वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा हो नसर, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की, सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था
1: नबील, नबील,
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही।
0: आरोही
1: हाँ, तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे।
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: इन दो
0: में
1: घंटे आता।
0: गाया
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो वो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ,
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो बोल, ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा नाम है अजय
1: हाँ।
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे, उन्होंने कंसर्ट किया, वहां गाने गए मजरू सुल्तान।

0: नहीं, वहां पे चीफ गेस्ट थे। तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई। तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहता है ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
1: हाँ बिल्कुल,
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है सुना दिया, हाँ ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ फिर एक बार। फिर उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
1: जी
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह
0: तो ये
1: वाह,
0: मजरूह
1: मजरू
0: सुल्तान
1: जैसे
0: पर साहब का
1: बड़े
0: आशीर्वाद था,
1: शायर की
0: है
1: बात
0: ना।
1: है।
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं अब।
0: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर शायरी का ही रहा
0: जी।
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
1: मशहूर
0: जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी,
0: जी
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी
1: कैफी आजमी, मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
0: जी
1: बशीर
0: जी
1: बद्र, निदा साहब उसके संचालन
0: सदर
1: कर रहे थे,
0: जी
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे
1: अजित एक्टर
0: जी
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर
0: अलग ही
1: के
0: होता था
1: अलग ही हुआ करता था,
0: जी।
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा, तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे बाप
1: तो
0: रे।
1: शुरुआत के एक दो शहरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुलाया कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
0: जी
1: है ना, भरपूर ऑडियंस पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ।
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे मैं होता है, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा ये प्यार हुआ ना तो मुशायरा तो हो गया,
0: अरे हाँ।
1: मतलब
0: अब
1: ये
0: तो शुरुआत कर रहे थे जबकि
1: हाँ
0: जी।
1: मुशायरा तो हो गया,
0: अरे बाप
1: मतलब
0: रे, बहुत बड़ी बात
1: हाँ
0: है
1: तो ये बड़ी बात थी। तो
0: जी।
1: ये जो मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
0: जी
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया
0: गजब
1: अपने घर पर,
0: जी।
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूं जिसके बारे में,
0: जी
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को भी बहुत पसंद थी
0: हाँ।
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
0: हाँ।
1: आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
0: चले
1: दुनिया
0: गए
1: में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: चले गए,
0: जी
1: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ। चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे।
0: जी
1: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा मैं बता रहा हूं कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें, हाँ तो मैं
0: बिल्कुल
1: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें।

0: तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो? मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी जी जी
0: तो किताब लेके और रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गज़ल गाई, दूसरी गज़ल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गज़ल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गज़ल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन
0: कर दिया,
1: खोला।
0: रिबन खोला ऑडियंस के सामने, ये सब हो गया और तालियां वालियाँ सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी
0: तो बोले नहीं राजेश रुक गए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
1: हाँ
0: पूरा,
1: बाकायदा और
0: हाँ
1: पूरा हॉल
0: पूरा
1: भरा
0: हॉल
1: हुआ है।
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, सारा गा रहे हैं वो, बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
1: अरे
0: स्टैंडिंग
1: बाप रे।
0: माइक दीजिए। हाँ तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गज़ल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे।
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जी
0: उनको
1: जी
0: पसंद थी गज़ल, तो सारे तो वो गज़ल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं ख़त्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी।
1: जी
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब।
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब।
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत।
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे यार ये तो
0: और
1: बड़ा
0: आपको
1: मिस
0: मालूम
1: हुआ।
0: था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, सब मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ जान।

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजल्ट का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे, उजाले,
1: उनकी
0: उनकी
1: यादों
0: यादों
1: के
0: के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
1: सखी
0: सहेली आपके
1: सहेली
0: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
0: जी
1: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए या

0: मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं, मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी, वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह
1: सब
0: से
1: चीजों को संभालते
0: थे। तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
1: जी,
0: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
1: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने रखते
0: थे। ऐसा कम होता है
1: जी।
0: तो हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है,
1: खयाम
0: साहब आ गए, लक्ष्मी प्यारेलाल जी आए
1: जी,
0: आनंद जी आए
1: बिल्कुल,
0: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
1: रवि जी आए,
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: खयाम साहब
1: आए, और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
0: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज
1: मुझे याद है कि खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं, और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं, और वहीं एक घंटे बात हो रही है।
0: उनको वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था
1: जी,
0: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
1: बिल्कुल,
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके ले सकते हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
1: जी,
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही हैं
1: जी,
0: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़कर एक,
0: एक से बढ़कर एक प्रोग्राम
1: जो है
0: वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
1: जी।
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
1: जी जी,
0: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके बाद तो कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
1: जी,
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे, एमए
0: जी
1: हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे, जापान में हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग।

0: नीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
1: जी
0: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
1: जी
0: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
1: जी
0: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
1: ओके
0: घर में, तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
1: अरे बाप रे
0: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
1: जी
0: वो सब
1: जी
0: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
1: अरे वाह
0: आर्य समाज की शादी में,
1: क्या बात है।
0: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
1: अरे
0: घर चला आया,
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम मैंने शादी कर ली है,
1: हाँ।
0: और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं
0: मुमकिन ही
1: सकता
0: होंगी
1: था।
0: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
1: हाँ
0: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
1: हाँ
0: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
1: हाँ
0: तो मुझे यहाँ से ले जाओ,
1: अरे बाप रे
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो
1: हाँ।
0: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और
1: गजब
0: हाँ, और हमारे इन फादर इन लॉ जो मौजूद थे,
1: हाँ
0: तो फिर हाँ, ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ के बाद, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
1: हाँ
0: हम ढंग से करते हैं, इसको करेंगे
1: हाँ
0: सब कुछ, लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा
0: ये नहीं
1: है।
0: होने देंगे,
1: हाँ हाँ
0: मैं भी चलूंगी,
1: गजब
0: मैं भी चलूंगी। तो
1: बाप रे
0: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया जब
1: जी
0: उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
1: और
0: और उन्होंने
1: ये
0: हाँ, तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ
0: सारा साहस इनका है
1: क्या बात है
0: ये उस जमाने में।
1: जी शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं 2-3 शेर सुनाता हूं,
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों
1: जिंदगा
0: नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के कितने
1: कितने हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह
0: मेरी एक
1: वाह
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और 2 छोटी छोटी बहर के शेर,
1: इरशाद
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर
0: कोरे
1: गिरा
0: कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या
0: एक
1: बात है
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना
1: गम छुपाना
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना

0: ना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: गम
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या
0: छुपाना
1: बात है,
0: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है, क्या बात
0: शुक्रिया।
1: है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी,
1: जी जी बिल्कुल
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था,
1: जी जी
0: मतलब किसी
1: डिफिकल्ट
0: लाइन को।
1: होता है ये,
0: हाँ, लेकिन ये गजल मुझे वहां 2 बार पढ़नी पड़ी,
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई,
1: वाह
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूं।
1: इरशाद इरशाद।

0: खुद को समेटते हैं यहां से
1: क्या बात है,
0: वहां से
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हम।

0: हूँ। और ये शेर मुझे खास सुनाना चाह रहा हूँ,
1: इरशाद
0: इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब।
1: जी,
0: एक होता है शराब और
1: और
0: एक
1: ये
0: होता है
1: होता है
0: शराब, जिसे
1: शराब।
0: मृगमरीचि का
1: जी
0: मिराज जिसे उर्दू इंग्लिश में
1: यस,
0: बोलते हैं, कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है, दिखता है, होता नहीं,
1: होता
0: है
1: नहीं,
0: ना, मरुस्थल में।
1: आग का धोखा है।
0: हाँ, पानी का धोखा, आग का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यार,
1: वाह वाह, अब तो शराब
0: अब
1: से
0: तो
1: ही।

0: कहाँ से हम।
1: क्या बात है,
0: थैंक
1: क्या बात है।
0: यू थैंक
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: यू, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: आज के मेहमान।

अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। आपकी आशा, ये एल्बम का नाम, आशा भोसले की आवाज, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ ये गाना, संगीत लेस्ली लेविस और हरिहरन का, एल्बम का नाम आत्मा।

अलीशाज लव नोट्स, ये एल्बम का नाम है। अलीशा की आवाज़, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटा का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान, सुनीता राव और साथियों की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना, अनु मलिक का संगीत, फिल्म का नाम अशोका।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, साहिर होशियारपुरी के ये शब्द हैं, संगीत जगजीत सिंह का और एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

0: पी बलराम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, शाहीन इकबाल के बोल, सुजीत शेट्टी का संगीत, एल्बम था ख्वाबों में।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। देखा है तेरी आंखों को, ये एल्बम का नाम, जय वालिया की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, संगीत ललित का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को है, लीजिए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्रिस्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग, अधिनियम और नियमों का उल्लंघन।

0: माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 12:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग, बाघ संख्या 1289। प्रायोजक है एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
3: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की,

0: जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
1: जी।
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
1: जी।
0: तो शुरू करें?
1: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
1: जी।
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या। यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: जी।
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
1: जी।
0: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
1: जी।
0: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढ

0: देखते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश

0: एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
3: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था
0: दादी।

0: दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काट।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
9: न, न, न, न, न, न, न, न, न, क्या मिलेगा का?

0: कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
2: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
3: अरे वाह,
4: अरे वाह अटकू मटकू।
2: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
3: पेड़ हमारे
5: दोस्त हैं।
3: जीवन में हरियाली लाओ,
5: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
6: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: श्रोता, ये आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक थे NCERT, भाग संख्या थे 1289। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं 103.5 MHz पर। श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय सेवा प्रसारण केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम यादों की महफिल।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
1: अरे पुरुआ के झोंकवा में

श्रोताओं, आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा प्रसारण केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र, सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: शहर का आमेर चैनल है। दिन का एक बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आम जनता से पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। सर्किट हाउस पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री का आज कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। श्री शर्मा वहां भी कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। कल मुख्यमंत्री इसी गांव में प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर रखना है। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर पाली के राजीव गांधी स्मृति भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया और 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा भी की। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस दूध और दूध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज शाम से लागू होंगी। डेयरी दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की वृद्धि की है। दूध के साथ दही, छाछ, लस्सी और पनीर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 74 रुपए की बजाय 80 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा 200 ग्राम दही का पैक अब 16 रुपए की जगह 18 रुपए में मिलेगा। सादा छाछ पर 1 रुपए और नमकीन छाछ और लस्सी पर 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अभी इससे कोई राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन तक प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य की

0: सात शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा जबकि आठ शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बीकानेर की रात सबसे गर्म रही, वहां न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह जारी की है। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी अब गूगल जेमिनी, ChatGPT और ग्रोक जैसी AI तकनीकों का उपयोग कर आधार बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियों को बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने आधार बायोमेट्रिक्स को एम आधार ऐप या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लॉक करने की अपील की है। बायोमेट्रिक्स लॉक होने पर फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक स्वयं उपयोगकर्ता उसे अनलॉक ना करे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र FM 103.5 MHz पर। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। लीजिए आपको फिर ले चलते हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय सेवा प्रसारण केंद्र विविध भारती की ओर। सुनते हैं अनुप्रसारित कार्यक्रम सुरीला सफर।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना, 1958, 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी, बहती जलधारा, लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से, कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है।

0: तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए, और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं, क्या किसी का साथ होता है, या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हवा के साथ साथ। जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आरडी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफ़र में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है, लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूं और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूं, घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बनाकर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूं और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा जरूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफर में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बनफूल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत, जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था, लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी, और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बातें हमें सबसे ज्यादा ठंडक देती है। चलिए, धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग, इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफर की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफर के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार, ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताजा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना, लता जी की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी, और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़ कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है, बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्म पत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छुमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक हाँ एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

भाई बहन फिल्म का गाना इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने के सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफी, आशा भोंसले की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, हेमंत कुमार और लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता, और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है,

लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित

0: होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan, with its long time,
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: इंडिया इज रिसेंटली लॉन्च।
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
6: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा कांग्रेस

0: और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर

0: सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

देते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम।

0: रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ों में भाभी की चूड़ियाँ इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली। कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप?
2: चंचल जी, और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भी देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहाँ अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने,
2: लेकिन इस वजह से वहाँ पे भी गर्मी होने शुरू हो गई
1: जी।
2: क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहाँ रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर,
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
2: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
2: वो बताएं अपना।
1: हाँ,
2: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सुमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
2: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए की गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय
1: चाय चाहिए,
2: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय होती है, दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियाँ जो हैं वो अपना आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात
2: करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।

0: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
1: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपना है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
0: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
1: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
0: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
1: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपड़े का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक़ रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है।
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान असुनपण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो, और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती हैं कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताज़ा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वासपूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
0: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों

0: को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बाबलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
1: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
0: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
1: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: चाय,
0: अगर
1: बिल्कुल
0: मिल जाए।
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी,
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े
1: हाँ
0: थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है
1: अरे
0: ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर के, उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, पता है, बस चाय नहीं पिलाई, तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय, उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना, वो भी बहुत हैं। जब बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर इसे हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज़्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज्यादा,
0: और पौराणिक
1: बहुत।
0: कथाएं हैं ना, वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं। और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समा बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो क्या है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहां लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं
1: हाँ
0: ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं,
0: जी
1: चलो एक बार और हो जाए, एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा।
1: एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल
0: जी
1: निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे हमें मिल जाए अगर समय, बात करते करते तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो वो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भिन्नी भिन्नी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक
1: बिल्कुल
0: गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल, पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कहते ना तौहीन हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसे कैसे होगा.
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी.
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की. 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया. और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया.
1: बिल्कुल.
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020

0: में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था, ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई है।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए हैं इस पे।
0: जी।
1: और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है। और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है, और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया की जो अन्य देश है उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहाँ भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो ज़रूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी सी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहाँ घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला
1: है।
0: हाँ,
1: मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की।
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब हाँ। समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज़ नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
0: चाय के प्याले भी करवा लिए जाते हैं
1: कप चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबाल

0: खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिस पर लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: ओहो,
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात है भाई।
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है
1: सच में।
0: इनका।
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है, उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय

0: जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है, हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित होते हैं जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने, आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही
0: हमारे श्रोता
1: है।
0: साथी लिखते हैं कि हर घूंट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो
1: वाह,
0: आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात
0: हमारे
1: है।
0: श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन, और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी, ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं, एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई, संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और
1: बिल्कुल।
0: बताओ कौन कौन से
1: और बहुत
0: फोबिया
1: से
0: होते हैं।
1: फोबिया होते हैं, जैसे कि किसी को किसी जैसे किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है
0: हाँ
1: ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है
0: जी,
1: अनावश्यक तौर पर, तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है
1: हाँ,
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपेनोफोबिया, जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया, जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहाँ फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया है ऐसा, तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहाँ पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, फितरों से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती। और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों आपके पूरे

0: को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
1: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आँखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से

0: ज़रूर धोया करें।
1: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, तेज़ धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा ज़रूर पहनिए।
0: बिल्कुल, और हम सुन लें गाना, और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से
1: येलो में
0: इजाजत।
1: चलिए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओ, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुँचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्ही गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। तो यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए। पिंक सिटी कहा जाता है इसे।
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ 2011 से, मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खास कर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सकाव की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाटे, और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा आंटी सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपन से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है, लेकिन आप रेडियो सुनते हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहेलियां जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, नेहा संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। काले बोले दिल में सनम की सूरत, आंखों में आंसू दे, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है आजकल, तो पक्षे की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पक जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम, अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी, जो हमारे कांगड़ा में हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमे बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छा हाल, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ,
1: चलता रहते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं?
1: इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अभी जब मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की।
1: जटिल कला है, जटिल कला है, जो तो कोई नहीं कर सकता, सीखने में टाइम लग जाता है। और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुसियान है या कोई तस्सर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा, इस तरह से।
0: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?

0: ना बिल्कुल सुनते रहते क्यों नहीं, विविध भारती में आपको एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको। मन चाहे गीत पत्रों के ऊपर आधारित।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादर जी अपनी पसंद का गीत।
0: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
1: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम जी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुलिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: ये खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए।

0: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन है और चलते रहता है आपका हेलो फरवाइस का कार्यक्रम, मन चाहे गीत भी चालू हो चुका है आपका।
1: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
0: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरवाइस सबसे फेवरेट है और शाम को जो 7 बजे आता है
1: शाम को
0: माला कार्यक्रम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
0: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
1: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार।
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आमची मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय

0: बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बम्बे में ही था जी।
1: अच्छा अच्छा।
0: मैं अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी, मेरे को हो गया 20-22 साल अमृतसर में जी।
1: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए।
0: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
1: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
0: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी, मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
1: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
0: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेंपल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
1: जी जी जी,
0: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लगता है। हाँ जी
1: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
0: हाँ जी।
1: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ, पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार
0: में? मैं ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
1: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, चुप जाए फूलों की डाल।
1: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत। तौबा।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैम नमस्ते जी।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी बताइए, क्या हालचाल हैं आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है।
1: जी जी मैम ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोफ्टनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोफ्टनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबे, ग्राम सामनाकर तालुका कागल जिला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वैसे पिछले साल में बंद रहता हो, घर में रहता हो, कार्यक्रम सुनता हो।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो, भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हो।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, सासन काठी डुले जोशीबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले जोशीबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले डुले।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने प्यार किया लता मंगेशकर, एस बी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई, दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं आज के कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.5 MHz पर। श्रोताओं संध्या के 5 बज चुके हैं। हमारे स्थानीय कार्यक्रमों का ये सफर अब आरंभ होता है। आइए आपको जानकारी दें हमारे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर में ठीक 5:05 पर आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम में आज के हमारे गायक कलाकार है सोनू निगम।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी। इनका प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया जाएगा। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्राम भारती आप सुनेंगे ठीक शाम 7:00। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती के फायदों के बारे में, साथ ही बात करेंगे उच्च गुणवत्ता के लिए सब्जियों में जैव उर्वरकों का महत्व के विषय पर और बात करेंगे फसल बीमा योजना के बारे में। साथ ही श्रोताओं आप सभी का मनोरंजन करवाएंगे राजस्थानी लोकगीतों से।

चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम फिल्म संगीत में ठीक शाम 7:30 पर। गीत और गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत हम सुनेंगे 8:15 पर। कार्यक्रम में आज के हमारे गायक कलाकार है मुन्ना लाल भाट।

रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। और रात्रि 10:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। इन कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से किया जाएगा। ये थे हमारे आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र। श्रोताओं, संध्या की 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं भजन सोनू निगम की आवाज में। आइए सुनते हैं इनकी आवाज में कार्यक्रम का ये पहला भजन।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संध्या की 5:30 होने को है। अब से कुछ ही देर में हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बाता। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया जा रहा है। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: आज मुंडा उतार के यहाँ बैठे हो।
1: काई करूँ दापू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और बीरो जीसोरो भी कौन।
0: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे भी बातिया काकी सा ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन से जुड़ी होरी सबली समस्या रो समाधान।
2: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
3: धीनेरी बातिया कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखो भाई और
4: साथे साथे बंशी भाई रा भी
3: मोकड़ा मोकड़ा राम राम राम राम बंशी भाई
4: राम राम हरखो भाई राम राम
3: और राम राम सगला मारा जगह भाई सुनन वाला है और हमारे सामने जगह चौपाल में बैठा है सगला बहन है भी राम राम सा। और देखो सा गर्मी है बात तो देखो
4: जही चेत की है भाई।
3: हाँ और देखो दिनों दिन आज की गर्मी बढ़ रही है नी मेरे पीछे विशेषज्ञ भी कहवे और अपन जगह बुजुर्ग है माई थे वे भी आप कहवे है के हरा जगह वृक्ष है भी कटन सु भी तापमान है वो वृद्धि हुआ इरमाने तापमान तेज हो गया है तो क्यों ना आपा भया एक एक पेड़ लगावा आपा।
4: बहुत ही अच्छा विचार है ओ
3: है नी। हाँ देखो अब टाबरिया कह के सोशल मीडिया पर से इंगला समाचार भी आवे के जे हमकी बिरखा वे नी तो एक एक दो दो पेड़ आपा लगावा और हर मान को जे एक एक दो दो पेड़ लगाई नी तो देखो राजस्थान है नी वो हरो भरो हो जासी और आज की तापमान समस्या है जी आप आने वाली पीढ़ी है वे थोड़ा कम भुगत सी।
4: सची बात क्यों कि भाई एक पेड़ है नी वो अनेक लोगों ने जीवन दिया करे
3: बिल्कुल
4: है नी तो फिर तो ये पेड़ जो जो महत्व आप सोचा नी उनको कितो बढ़ जावे।
3: बिल्कुल सर जिका पेड़ आप महित लगाया बी आर ओ कहन के लाभ आपने मिल रही है और आपा अगर लगा सा पीढ़ी ने मिल सी है नी तो ये वास्ते आप निस्वार्थ हो परार ओ काम कर सा तो देखो जगत रो भलो है और आपा रो भी भलो है तो पेड़ तो आपने लगावनी है और जिगा पेड़ खाली लगावनी को नहीं ऐसा के
4: उनको खासो ध्यान भी रखना
3: ध्यान भी रखना के पेड़ लगाया एक फोटो खींची और सोशल मीडिया पर आज हमने एक वृक्ष लगाया है नहीं सा लगाया नहीं भी रही पूरी जिम्मेदारी भी आपा नहीं उठावनी है जब आप जिम्मेदार बन सा नहीं जद ही देखो जो पेड़ है नी वो पूरा पनप सी
4: भाई आज रो जो पेड़ है लगेड़ो वो आपने आने वाले टाइम रे मायने वो जीवन देसी
3: बिल्कुल जीवन देसी सा और साथे साथे जो तापमान जो बढ़ रहे हैं तो जे काम नहीं है ना आवश्यक घर से निकलिया ना और जे काम है निकलना ही पड़े तो देखो कि खा पीर पानी पीर माथो ढकर ही आपने निकलना है।
4: जी हां रखू भाई।
3: हां छोटो सा काम है कि आप आपरो ध्यान रखा सा देखो चौपाल में बैठा जन आप हथई तो करई हां और चौपाल में आप विशेषज्ञ भी पधारे।
4: हां
3: तो देखो आज बात कर ला आप भेड़ व बकरियां की प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम। हाँ तब देखो आज विशेषज्ञ के बारे में बता दूं आज राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे हैं सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन। डॉक्टर मनोहर जी आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है और आपने भी करा
5: राम राम सा
6: राम राम सा राम राम सा
4: सेऊ पहली डॉक्टर साहब महाराज पशुपालक के उन्होंने आप बताओ कि भेड़ और बकरियां रा होड़ वाला प्रमुख रोग है बे किसे किसा है।
6: हरको भाई है बंसी भाई भेड़ और बकरियों में बहुत सारे रोग होते हैं और उन रोगों के होने के कारण कई बार पशुपालकों को आर्थिक हानि भी होती है पशु मर जाता है। तो एक तो रोग होता है फड़किया रोग एक होता है गलगोटू रोग खुर गलन रोग है एंथ्रेक्स है और ब्रुसेलोसिस रोग है। इसके साथ साथ जैसे बकरी का प्लेग रोग है जिसे पीपीआर भी कहते हैं चेचक रोग है खुरपका मुंहपका रोग है ब्लू टंग रोग है ऐसे बहुत सारे और भी रोग हैं जो पशुओं में होते हैं भेड़ बकरियों में होते हैं और कई बार अगर ध्यान नहीं देंगे तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है।
3: तो सेऊ पहले डॉक्टर साहब हमने बताओ कि फड़किया रोग कहीं है किया हुए और पशुपालक आपकी भेड़ और बकरियां ने इनसू किया बचावे।
6: हरको भाई और बंसी भाई ये भेड़ बकरियों में जीवाणुओं से होने वाला बहुत ही खतरनाक रोग है जो क्लोस्ट्रिडियम नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भेड़ बकरियों के आंतों में और ग्रास नले में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणु को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है यह वहां पर वृद्धि कर लेता है और वहां पर जहर स्रावित करता है। उस जहर से भेड़ बकरियों की कई बार मृत्यु हो जाती है। यह रोग मुख्य रूप से तब होता है जब पशु को अचानक से चारे में परिवर्तन कर दें उसके खान पान में अचानक से परिवर्तन कर दें या पशुओं को जो बरसात फसल कटाई के बाद में पशुओं को अपन खेतों में चरने के लेके जाते हैं वहां पर उसके चराई का समय अगर ज्यादा हो जाता है तो पशु ज्यादा खा लेता है या बरसात के बाद में जैसे बरसात होती है उसके बाद में हरी हरी घास उगती है प्रोटीन युक्त घास उगती है उसको अगर ज्यादा खा लेता है तो इस रोग के होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और इस रोग में प्रमुख रूप से पहले अचानक से पशु को आफरा आता है पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है।

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बात्या।
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं।

0: पशु के मांसपेशी में ऐंठन हो जाता है और कई बार पशु की मृत्यु भी हो जाती है। और इस रोग में मुख्य रूप से जो स्वस्थ पशु होते हैं और जो मेमने होते हैं वो प्रभावित होते हैं
1: जी,
0: और अचानक से हरे हरे धस्त भी लग जाते हैं। तो इस रोग को पहचानने के लिए ये जो प्रमुख लक्षण बताए हैं मैंने, उनका ध्यान रखें और साथ में ही जो पशु बीमार हुआ है उसको अलग करके पशु चिकित्सक से उसका तुरंत उपचार करवाना चाहिए। साथ में ही 3 महीने से जो भी बड़े पशु हैं उन सबका बरसात से पहले टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए और जो पशु जहां रहते हैं वहां की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रख करके आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, क्योंकि ये रोग ऐसा रोग है एक बार आपके अगर फार्म पे आ गया है तो लगभग सभी पशुओं में होने की संभावनाएं रहती है। अच्छा। इसलिए विशेष ध्यान रख करके इसको इस रोग से अपने पशुओं भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है।
1: जी सर, छोटी छोटी बातें हैं पर महत्वपूर्ण बातें हैं।
2: बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब गलघोंटू रोग है वो कई होया करे, इन रोग का ही मतलब है भेड़ बकरियां में भी और रोग होया करे क्या, और जे हुए तो पशुपालक आप पशुआ ने इन रोग से क्या बचा सके?
0: बंसी भाई, जैसे फड़किया रोग है जो बरसात के समय होता है, वैसे ही गलघोंटू रोग भी बरसात के समय होता है।
2: अच्छा।
0: यह भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है जो पास्चुरेला माल्टोसिडा नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भी श्वास नली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणुओं को भी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, जैसे ही पशु को तनाव मिलता है, जैसे ही पशु को तनाव देते हैं तो ये रोग अचानक से हो जाता है। तनाव कैसे मिलता है? जैसे पशु को अपन ने लगातार पैदल चलाया या एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी गाड़ी में उसको ट्रांसपोर्ट किया या पशुओं के चारे में अचानक से परिवर्तन हुआ या मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ तो ये जीवाणु जो श्वास नली में उपस्थित है अचानक से वृद्धि कर जाता है और ये रोग कर देता है। इस रोग में सबसे पहले पशु को बुखार आता है, नाक से स्राव आने लग जाता है, गले पे और छाती पे सूजन आ जाती है, सूजन का हाथ लगाते हैं तो कुछ दर्द होता है और सूजन आने से सांस नली पे जोर पड़ता है, उस जोर पड़ने के कारण से पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके सांस के समय घर घर की आवाज आती है। इसलिए इस रोग को गलघोंटू रोग भी कहते हैं और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए रोग से बचने के लिए सबसे पहले आपको जो बीमार पशु है उनको अपने बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग करके उसका पशु चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। यह रोग भी बरसात में होता है तो बरसात शुरू होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले इसका टीकाकरण करवाना चाहिए सभी पशुओं में जो 3 महीने से बड़े पशु हैं, और जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके इलाज करवाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूं, साफ सफाई ध्यान रखेंगे तो इन रोगों से बचा जा सकता है। और एक टीकाकरण जो पशु स्वस्थ हैं उन सभी पशुओं में बरसात शुरू होने से पहले अप्रैल और मई में पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए।
2: क्यों ना, मतलब वही अर्खो भाई कि भाई साफ सफाई री सावधानी और टीकाकरण की सजगता ये जरूरी बात है।
1: बिल्कुल सर, गलघोंटू रोग बाद में डॉक्टर साहब अब मैं आपसे जानकारी चाहूँ कि ब्रुसेलोसिस रोग क्या फैलिया करे और पशुपालक भाई किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ये रोग के प्रति।
0: ब्रुसेलोसिस एक बहुत ही खतरनाक रोग है, यह एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये पशुओं से मनुष्य में भी आता है और ये एक जीवाणु है जो बकरियों और भेड़ों में होता है। ये मुख्य रूप से ब्रुसेला मेलिटेंसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में पशु की गर्भावस्था के अंतिम समय में जो अंतिम महीने होते हैं 3 महीने उनमें अबोर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तथा जो जेर होती है जिसको अपरा भी बोलते हैं वो गिरता नहीं है और बच्चा जाने से बदबूदार स्राव होता रहता है। जो नर पशु होते हैं उनमें अंडकोश में सूजन आ जाती है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। ये जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है या जो मरा हुआ बच्चा बाहर आया है और जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है उसके संपर्क में आने पे दूसरे पशुओं में भी ये रोग हो जाता है। उसके संपर्क में अगर कोई मनुष्य आता है या कोई जो पशुपालक उसको हैंडल करता है वो उसके संपर्क में आएगा, उनमें भी ये रोग हो जाता है। तो इसमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि जो भी जिस पशु में ये रोग होता है उस पशु को अलग कर दें, उसका उपचार करवाएं और साथ में ही जो उसका बच्चा मरा हुआ है, जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है और जो भी उसके आसपास जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह जो उससे संक्रमित हुए हैं उन सबको गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। और जो 4 से 6 महीने के जो बछड़ियां जो बकरियां होती हैं जो भेड़ होती हैं उनमें टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए। इस प्रकार से बचा जा सकता है। और मनुष्य में भी विशेष रूप से जो इस भेड़ों के और बकरियों के संपर्क में आते हैं उनको अपने हाथ अच्छे तरह से पानी और साबुन से धो करके फिर दूसरे काम करने चाहिए।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर।
2: डॉक्टर साहब बकरियां रो प्लेग और पीपीआर रोग कहीं हुआ करे, इनसे बचाव रा उपाय भी आप महाराज का पशुपालक भाई हैं उन्होंने बताओ सर।
0: पीपीआर रोग एक जीवाणु से होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है, इसको बकरी का प्लेग भी कहते हैं। इस रोग में पशु को अचानक से तेज बुखार आता है, जीभ पे मसूड़ों पे और होठों पर छाले हो जाते हैं तथा मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और मुंह से बदबू भी आती रहती है और नाक से गाढ़ा स्राव आता है, वो स्राव पपड़ी के रूप में जम जाता है तो पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और बदबूदार धस्त भी लग जाते हैं। तो इसमें डिहाइड्रेशन से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये रोग खतरनाक हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके अलग से उसका पशु चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए और 3 से 4 माह के बीच के जो पशु हैं या 3 महीने से जो बड़े

0: जो है उन सब में उसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। मैं बार बार टीकाकरण पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये रोग जो है पीपीआर रोग है ये सर्दियों में होता है, तो सर्दी शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में इसके टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए, और टीकाकरण से ही अपन रोग से पशुओं को बचा सकते हैं, क्योंकि जब पशु बीमार हो गया है उसके बाद उसका इलाज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि उपचार में भी पैसा लगता है, इसलिए टीकाकरण के द्वारा इन रोगों से पशुओं को या भेड़ बकरियों को अपन बचा सकते हैं, तो समय पर इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए।
1: केवल मतलब वही है कि भाई सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी से हूँ पहली रखनी जरूरी है।
2: बिल्कुल सा, और अब जी को बखत है वो है गीतड़ ले रो।
1: बिल्कुल सा, जरूरत है गीतड़।
2: बिल्कुल, तो आपसे सुन सा एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: भाई आबार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेड़ा आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातियां। और आज चौपाल में जानकर देवन सर पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सैन। और आज आप बातचीत करिया भेड़ और बकरियां री प्रमुख बीमारियां, बचाव और रोकथाम।
2: हरखू भाई, जिज्ञासा जी की जीवन ने कही है कि गति दिया करे।
0: बिल्कुल।
2: तो भाई देखो सर, जिज्ञासा ने बढ़ावन सारू डॉक्टर साहब सु आगलो सवाल मैं कर रहे हैं, खुरपका मुंह पका रोग किया फैले।

0: और पशुपालक इन रोग से पशुओं ने किन भात बचा सके।
1: खुरपका और मुंहपका भेड़ बकरियों में होने वाला प्रमुख रोग है और अत्यधिक संक्रामक रोग है और ये एक विषाणु से होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो दो खुर वाले पशु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें ज्यादातर होती है। इस रोग में सबसे पहले तेज बुखार आता है, मुंह पे, खुर पे और थनों पर और अयन पर और खुरों के बीच वाली जगह पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो फिर अगर खतरनाक होने पर घाव का रूप भी ले लेते हैं। पशु लंगड़ा करके चलता रहता है, मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और बकरियां व भेड़ लंगड़ा कर चलती है और मेमनों में इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी पशु बीमार हो तुरंत पशु चिकित्सक को बुला करके उसको अलग करके उसका इलाज करवाएं। दूसरा, साल में दो बार इस रोग के टीके लगते हैं, एक तो अप्रैल मई में तथा दूसरा सितंबर अक्टूबर में, वो टीके अवश्य लगवाएं। और इसमें गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है FMDCP प्रोग्राम जिसमें साल में दो दो बार ये टीके फ्री में लगाए जाते हैं। और साथ में जो पशु बीमार है उसको दलिया और मुलायम हरा चारा खिलाना चाहिए जिससे पशु उसको आराम से खा सके। साथ में प्रतिवर्ष सभी पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं और ये भी ध्यान रखें जो घाव हो रखे हैं उन पे मक्खियां नहीं बैठने देवे, एंटीसेप्टिक क्रीम उस पे लगाएं और लाल दवा का हल्का घोल बना करके उसको धो करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और मक्खियों पर नहीं बैठे ये विशेष ध्यान रखे, नहीं तो वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं और घाव अत्यधिक खतरनाक हो जाता है और फिर ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं रहती है।
2: बिल्कुल सर, और मक्खियां जद ही बैठ सी जद बाड़े रे मायने गंदगी हुए, साफ सफाई नहीं हुए, साफ सफाई नहीं हुए जने देखो कीट पतंगा जी कहने बहुत फैलिया करे और ये पशुओं वास्ते बहुत ही नुकसानदायक है। और साथ ही साथ अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा हाँ कि भेड़ बकरिया में संक्रामक रोग से क्या बच सका हाँ और इन्हें बाबत पशुपालक ने कई कई सावधानियां रखनी चाहिए।
1: संक्रामक रोग काफी घातक होते हैं और कुछ पशुओं को बीमार होने पर यह फार्म के लगभग सभी पशुओं में होने की संभावना भी रहती है, तो कई बार पशु की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही पता लगे कि पशु बीमार हो रहा है उस पशु को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसका खान पान, उसका पानी जो भी है सारा अलग करें। साथ में ही जो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मानसून में होते हैं और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सर्दियों में होते हैं, तो मानसून में जैसे मैंने बताया फड़किया रोग होता है, गलगोटू रोग होता है, तो इनके टीके लगते हैं, वो टीके मानसून शुरू होने से पहले अप्रैल मई में अवश्य लगाने चाहिए जिससे ये रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि फड़किया रोग और गलगोटू रोग अगर आपके फार्म पे आ जाते हैं तो काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे ही कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सर्दियों में होते हैं, जैसे चेचक रोग बताया मैंने, PPR रोग बताया, FMD बताया, खुरपका मुंहपका है, तो ये रोग सर्दियों में होते हैं ज्यादातर होते हैं, लेकिन अभी आजकल मौसम परिवर्तन हो रहा है तो कभी भी होने की संभावना रहती है। इसलिए इनका भी सर्दियां शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में हमेशा टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। कुछ टीके गवर्नमेंट से फ्री भी अवेलेबल कराए जाते हैं, तो वो टीके आप जब भी आपके गांव में कोई पशु चिकित्सक आता है या कोई कंपाउंडर आता है तो उनसे टीके अवश्य लगवाने चाहिए। साथ में फार्म पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई रखेंगे तो ये बीमारी दूसरे पशुओं में फैलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पशुओं को संतुलित और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, आहार हमेशा उनको संतुलित देना चाहिए जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। और अन्य फार्म से जो खरीद कर पशु लाते हैं या अन्य जगह से कहीं से पशु खरीद कर लाते हैं उनको सीधा अपने पशुओं के साथ, पुराने पशुओं के साथ मिक्स नहीं करना है, मिलाना नहीं है, उनको अलग से रखें, एक महीने तक उनकी निगरानी करें और जब एक महीना हो जाए उसके बाद उसको अपने अन्य पशुओं के साथ मिलाना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें और अपने पशुओं को सर्दी से, गर्मी से और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना चाहिए जिससे पशुओं में रोग होने की संभावनाएं कम रहती है। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रख करके पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं और अपनी आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं।
2: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर,
3: सौ बात रही एक बात के भी बचाव ही उपचार है।
2: बिल्कुल,
3: आप बताओ डॉक्टर साहब के भी बचाव ही उपचार होया करे और इन बाबत साफ सफाई रे साथ साथ है टीकाकरण है वो जरूरी होया करे। तो टीकाकरण सारू महाराज का पशुपालक भाई है, उन्होंने किसी किसी जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए, इन बाबत भी आप जानकारी दो सा।
1: अभी मैंने बताया कि बचाव ही उपचार है, बचाव का मतलब यह है कि रोग आना ही नहीं चाहिए अपने फार्म पे। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपना समय पर जो शेड्यूल है उसके अनुसार पशुपालकों को अपने भेड़ बकरियों का टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण करवाते समय विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप ये पशुपालक शिकायत करते हैं कि मैंने टीका लगवाए थे लेकिन फिर भी ये बीमारियां आ गई हैं। तो सबसे पहले जब भी टीकाकरण करें हमेशा स्वस्थ पशुओं में करना चाहिए।
3: अच्छा,
1: दूसरा, टीकाकरण से पहले पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य पिलानी चाहिए जिससे जो टीके लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टीका अच्छी तरह से काम करेगा। तीसरा, टीकों का रख रखाव हमेशा ठंडे तापमान 2 से 8 डिग्री पर ही करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर टीके को आपने गर्मी में रख दिया या बाहर रख दिया तो टीके खराब हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। और हमेशा उचित शीत श्रृंखला का पालन करना चाहिए, अर्थात टीकों को जब आप लगाएं और लगाने से पहले उनका अच्छी तरह से ठंडे तापमान पर

0: रखना चाहिए, उसके बाद ही टीकों को लगाना चाहिए। और हमेशा पशुपालक को अपने जो टीके लगाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मैंने ये टीका कब लगवाया था, दूसरा टीका मेरे को कब लगवाना है। ये जब याद रखेंगे तो ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं वो आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और टीकाकरण भी आप जब करवाएंगे, अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो टीकाकरण भी फेल नहीं होगा, टीकाकरण भी काम करेगा और अपने पशुओं को आप बचा सकते हैं। टीका अगर समय पर नहीं लगवा पा रहे हैं फिर भी टीकों को लगवाना चाहिए, क्योंकि बीमारी आने की संभावना आजकल कभी भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि कुछ दो रोग मानसून में होते हैं, अगर आप मानसून में अप्रैल मई में नहीं लगवा पाए तो अगर जून में या जुलाई में लगवाना तो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टीकों जब भी लगाते हैं तो उसके 21 दिन के बाद में टीका काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा टीकाकरण अगर आप थोड़ा समय इधर उधर भी हो जाता है तो करवाना चाहिए।
1: पहली बात तो आई है कि भाई समय से लगा होना चाहिए, और जो नहीं लगा पावा तो भाई देखो सा दो चार दिन ऊपर हो जाए तो चिंता की बात को नहीं, तुरंत लगा लेना चाहिए,
2: टीको लगवाना है,
1: जरूरी है।
2: बिल्कुल सा। और अब थाने एक अच्छी बात और बताऊं कि देखो 18 मई 2026 राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आप 17वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनायो और डॉक्टर साहब भी कार्यक्रम में शामिल आ।
0: हाँ हाँ, मैं भी इस प्रोग्राम का साक्षी बना हूँ और धूमधाम से हमारे विश्वविद्यालय ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है।
2: इन अवसर पर डॉक्टर सुमंत व्यास आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई थी, अब थारो मन उसी के हूँ भी सुनना चाहूँ। हाँ,
1: बिल्कुल बताओ
2: सर। तो आपने और अपारा जितना भी श्रोता है, अपारा पशुपालक भाई है, बीएनबी में मेरा जगह अंश है, मैं सुनावना चाहूं तो आपसे सुनो सा मेरा अंश।
3: जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सोचा गया था तब वो अकल्पनीय लगता था। उससे पहले शायद एक या दो विश्वविद्यालय ही पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविश्वविद्यालय के नाम पर अलग से स्थापित हुए थे और बहुत मुश्किल था कृषि के पारंपरिक क्षेत्र से अपने आप को अलग स्थापित करना। इस तथ्य के बावजूद कि कृषि के समग्र जो जीडीपी में योगदान है उसमें सबसे अहम योगदान पशुपालन का होता था और इस पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन का योगदान कृषि से भी ज्यादा होता था। मैं उन सभी को जिन्होंने प्रोफेसर गहलोत के नेतृत्व में संघर्ष किया, जिनमें प्रोफेसर टीके गहलोत, प्रोफेसर तंवर, प्रोफेसर कश्यप, प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर राव, प्रोफेसर पुरोहित, ये सभी जो पीढ़ी थी इन्होंने उस वक्त जिस तरीके से काम किया तभी ये परिकल्पना साकार हो पाई। किसी भी अगर उच्च अधिकारी को अगर हम लेकर आए फार्म्स पे तो एक बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक बेसिक प्रोडक्टिविटी का काम हो रहा है। बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है फार्म्स पे। हमारे कंट्रोलर साहब की टीम जो है बड़ी अच्छी रही और कुछ पैसा इस विकट स्थिति में भी हम लाने में कामयाब हुए हमारे फार्म्स को सुदृढ़ करने में। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और बेहतर होगा। ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा क्लाइंट है उसी के कारण ही हमें टीम्स ने मेहनत करी तो ICR का जो प्रोजेक्ट है वो भी वापिस आया, रिवाइव हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट भी जो बंद होने वाला था वापिस आया प्रोजेक्ट। एक और डिसहार्टेंड टीम थी उनकी भी स्पिरिट कुछ बढ़ी है और एक नया प्रोजेक्ट फार्म मशीनरी का भी सबमिट किया है। उम्मीद है कि वॉलंटरी सेंटर आना चाहिए। कुछ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हमने सबमिट किए हैं NLM में और टीम ने जयपुर में भी बड़ा प्रयास किया उसमें और आगे भी प्रयास जारी है। अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैं नहीं कहता पर कंटिजेंसी में हमें काफ़ी फायदा हो जाएगा और कुछ अच्छे रिसर्च आउटकम हमारे आएंगे। इस विश्वविद्यालय की जो टीम है उसने जो LST पे सर्वे करके जो रिजल्ट दिया मेरे को भी लगता था कि ठीक है हम लोगों ने काम किया और अब भेज दिया और कर दिया, पर उसका इम्पैक्ट जब अब वहाँ से सुनने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट जो है ये हुआ है कि जो वाइड स्प्रेड उसकी जो परमिशन थी LSD वैक्सीन की उसके लिए वो स्टडी बहुत सहायक हुई है। मैं नहीं जानता कि वो क्रेडिट उस तरह का उस जो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी टीम थी जिसने उस कार्य को संपादित किया वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा एग्जैक्ट क्रेडिट, पर अघोषित रूप से मुझे बहुत से लोगों ने उसका क्रेडिट इस विश्वविद्यालय को दिया और उसी का नतीजा है कि इस साल राजस्थान सरकार ने 22 करोड़ रुपए की LSD वैक्सीन खरीदने की अनुशंसा जारी की है। तो ये एक विश्वविद्यालय को हमारी टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी

0: नजरों में। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत से बच्चों को टॉफल जीआरई क्या होता है ये भी पता नहीं होता। कोशिश है, मेरी प्रयास है कि आप लोगों में से भी लोग स्कॉलरशिप्स लेकर बाहर जाएं। क्लिनिक्स हमारी इस विश्वविद्यालय की शुरू से रीढ़ की हड्डी रही है। इस जो झंडा ने हमेशा हमारे विश्वविद्यालय को एक नई और अच्छी ऊंचाइयां, प्रोफेसर रतन सिंह से लेकर आज तक हमेशा इस क्लिनिक का जो है बड़ा नाम रहा है। एक चीज जरूर साथ में रखें कि हसरतें ख्वाहिशें बहुत हों पर जरूरतें कम रखें। अगर आपको बिना एसी के भी रहने दिया जाए तो आपको एक क्षण भी परेशानी ना महसूस हो। इस तरह की अगर जिंदगी अपन बना सकें तभी हम सही मायने में पशु चिकित्सक कहला सकेंगे। धन्यवाद।
1: वाह भाई अरखू भाई, देखो सा सुमंत व्यास जी रा जका उद्बोधन सुना नी, मैं इया लागे कि भाई देखो सा जन जन सु जुलोड़ी बाता बता रिया था।
2: बिल्कुल सर, अब देखो सा वक्त इशारो करण लाग गया है
1: और उन इशारे ने तो भाई देखो सा समझते थका। समय री कदर सगला ने करनी चाहिए,
2: करनी चाहिए। तो मैं आपने बता दू सा, आज चौपाल रे मायने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु पधार्या सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन, और आज आप बातचीत करी भेड़ और बकरिया री प्रमुख बीमारियां, बचाव और रोकथाम विषय पर। डॉक्टर मनोहर सेन साहब, आप चौपाल में पधारिया, हमारे पशुपाल का ने इतनी बढ़िया महत्व जानकारी दी, इन सारू मेह देवा आपने धन्यवाद और करा
3: राम राम, राम सा
4: राम राम सा।
5: तो आज ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ढीणे री बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा, घणान घणा राम राम सा।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
7: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
8: काई करू धापू बेटा, भैंस पूरो दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन।
7: आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम ढीणे री बातिया। काकी सा, ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ियो री सबड़ी समस्या रो समाधान।
9: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम ढीणे री बातिया।

0: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बाता। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने को है, लीजिए सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात

नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक

0: हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, संध्या की 6:05 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सेहतनामा। कार्यक्रम में आज की हमारी वार्ताकार है डॉक्टर पूजा द्विवेदी।
3: अचानक आए मौसम के परिवर्तन से सांसों की बीमारियां, मौसम संबंधी एलर्जी, साइनस की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही मौजूदा दीर्घकालिक बीमारियां, जिन्हें हम क्रॉनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, यानी ऐसी बीमारियां जो लंबे समय से आप जिन पे दवाइयां ले रहे हैं और उनके बढ़ने की जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। ये परिवर्तन प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करके तथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क को कम करके मनोदशा में परिवर्तन, थकान, सामान्य सर्दी, फ्लू जैसे संक्रमणों के प्रति हमारे शरीर की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। कुछ मुख्य शारीरिक प्रभाव जिनके बारे में हम सभी जानते भी हैं और कम न ज्यादा आए दिन हम पे इनका प्रभाव भी होता है, उनमें सबसे पहले है सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या। तापमान और बैरोमीटर के दबाव में परिवर्तन के कारण मस्तिष्क में रक्त वाहिकाएं या तो सिकुड़ जाती हैं या फैल सकती हैं। इसके वजह से ही सिर में अचानक में कभी किसी एक तरफ या कभी पूरे सिर में, कभी आगे की तरफ

माथे पे कभी पीछे की तरफ एक दर्द बना रहता है या भारीपन होता है। दूसरी जो समस्या बहुत आम है उसमें है जोड़ों का दर्द, और ये जोड़ों का दर्द किसी आयु विशेष के लिए नहीं है, ये किसी को भी हो जाता है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो आते से ही दर्द की बात कहते हैं। जो हमारे घर में 60 वर्ष के ऊपर वृद्ध रहते हैं उनको भी बहुत दर्द होता है, जबकि वो लेटे रहते हैं एक स्थान पे, कोई उनकी गतिविधि नहीं रहती है, और जो काम करते हैं उनको तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारी एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, इसलिए हमें बहुत दर्द हो गया है। तो ये जोड़ों के दर्द का भी कारण है जो तापमान में परिवर्तन आता है, और ये अचानक में जो आर्द्रता होती है हमारी वायु में, इसकी वजह से जोड़ों का दर्द बहुत तकलीफ देता है। और ये ज्यादातर तूफान के पहले या ठंडे मौसम के पहले ही हमारे ऊपर अपना अटैक कर पाते। श्वसन संबंधी समस्याएं, अब अचानक आए तापमान में इस परिवर्तन से और जो वायु में आर्द्रता है इसके कारण श्वसन तंत्र पर दबाव डाल सकते हैं ये। इसके कारण अस्थमा, COPD, क्रॉनिक साइनसाइटिस जैसी बीमारियां और ही बिगड़ जाती हैं। कुछ लोगों को ये पहली बार अनुभव होती है, और जिनको तो ये पहले से है, यानी जिनके लिए ये एक क्रॉनिक बीमारी है, वो एक उनकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। शुष्क हवा श्वसन पथन में बलगम को भी सुखा सकती है, यानी कि जिन लोगों को प्रोडक्टिव कफ की बलगम के साथ वाली खांसी की तकलीफ है उन्हें ये शुष्क हवाएं सुखा देती हैं, और वो बलगम जम जाता है। इसकी वजह से छाती में दर्द रहना, भारीपन रहना, रह रह के खांसी आते जाना, कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं तो बढ़ जाती है, रेस्ट करने के लिए लेटते हैं तो और बढ़ जाती है, और सबसे ज्यादा ये हमें रात के समय तकलीफ देती है। अब जो बढ़ी हुई बीमारियां हैं, यानी कि जो हमारी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जो कई सालों से जिनकी हम दवाइयां ले ही रहे हैं, उन बीमारियों का जो स्तर होता है, प्रभाव होता है हमारे शरीर पे, वो कई गुना बढ़ जाता है। कम तापमान और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, और जिसके कारण ही ये हमारी दबी हुई बीमारियां और अपने कड़े रूप में हमारे शरीर पे प्रभाव अपना दिखाती हैं और हमारी परेशानी कई गुना बढ़ा देती हैं। अब दूसरा हमारा जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, जो समस्या के रूप में हम सबके डेली लाइफ को भी बहुत प्रभावित करता है, वो है मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। कोई ऐसी चीज जो हमारे शरीर पे हो तो जरूर ही है कि उसका हमारे मन मस्तिष्क पे पूरा प्रभाव पड़ता है, हमारी भावनाओं पे प्रभाव पड़ता है, और इसके कारण ही जो हमारा व्यवहार है, हमारी बातचीत, हमारा सोच, हमारा काम, सब कुछ बहुत प्रभावित हो जाता है। इसमें पहली समस्या जो हम सभी अनुभव करते हैं वो है मूड स्विंग। मूड स्विंग में अभी अभी तो सामने 3 लोग बैठ के रोज की तरह मजाक कर रहे हैं और रोज हम हंसते थे, और आज तो हमें बहुत गुस्सा आने लगा, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, मन में तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ परेशानी है और बाकी लोग तो अपना रोज के अनुसार ही व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो मूड स्विंग है और थकान, इसका भी कारण है कि सूर्य का प्रकाश तो ना के बराबर हमें प्राप्त होता है। मॉनसून के समय में काफी दिनों तक लगातार सूर्य की रोशनी हमें मिलती नहीं है, और जो हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं वो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, और उनकी मात्रा भी कम होती है, हल्की भी होती है। अब इसी दौरान जो हमारे खुशी का हार्मोन है सेरोटोनिन, उसके भी जो स्तर है उसमें भी फर्क आता है, परिवर्तन होता है। अब क्योंकि हमारे खुशी के हार्मोन के स्तर में परिवर्तन आया, उसकी मात्रा में परिवर्तन आया, तो जरूर ही हमारे मन पे असर पड़ता है। इसकी वजह से ही हमारा जो मन है वो थोड़ा गिरा गिरा सा अनुभव होता है, जिसको हम आम भाषा में सुनते हैं कि पता नहीं क्यों बहुत डिप्रेशन अनुभव हो रहा है, आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। कुछ अच्छा काम भी हो, ग्रुप में भी कुछ जाना है, कुछ करना है, तो मुंह से निकलता है, आज नहीं यार, आज मूड नहीं है। तो ये भी इसका भी कारण है, हमारे जो फील गुड हार्मोन्स है, हमारे खुशी के हार्मोन्स है, उनके

स्तर में परिवर्तन। इसके बाद एक जो इसका रूप है, जो आजकल जिसके बारे में काफी स्टडीज हो रही हैं और थेरापीज भी यूज की जा रही हैं, उसको हमने नाम दिया सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होता है, हमारे खुशी के हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है, तो इसी वजह से अब इस मौसम बदला, बारिश हुई, हवा में इतनी आर्द्रता है, इसकी वजह से हम बाहर भी कम जाते हैं, हमारी एक्टिविटी भी थोड़ी सी फर्क हो जाती है हमेशा के कंपैरिजन में। तो जो हम घर में रह जाते हैं और एक मोनोटोनस लाइफस्टाइल हो जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा जो मानसिक स्थिति है वो भी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो इसके ही कारण हमको थोड़ा सा गिरा गिरा अनुभव होता है। तो ये डिसऑर्डर में सभी आ गया, और इसके बारे में भी आजकल दवाई के अलावा भी हमारी हीलिंग सेशंस हम देके उनको ठीक कर पाते हैं। अब ये जो मौसमी परिवर्तन, इनसे संबंधित अवसाद है, डिप्रेशन है, दरअसल इसका इलाज किसी भी दवाई में होता नहीं है, लेकिन एक चिकित्सक की परामर्श इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। यहां वहां की कुछ सुन के, किसी और के बताई हुई राय के अनुसार हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारी ये परिस्थिति जो आई है, जो हमारी ये तकलीफ आई है, ये बढ़ सकती है। अब हमने देखा है कि त्वचा में तरह तरह के हमारे जो परेशानियां आती हैं वो हमें दिखाई भी पड़ती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, स्किन जो होती है, या तो इसमें ऑयल बहुत होने लगता है, कुछ लोगों को अपनी स्किन का कलर भी डल या डार्क दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों ने देखा है कि उनको या तो बहुत खिंचा खिंचा अनुभव होता है, स्केल जैसी हमारी स्किन पे बन जाते हैं, कुछ लोगों को फुंसियां और दाने हो जाते हैं, जिनके तो निशान भी रह जाते हैं। तो ये स्किन की प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी एक समस्या होती है, जो ज्यादातर लोगों को जरूर अनुभव होती है। आंखों में भी एक हमें खुश्की, जलन या लाल होने की समस्या होती है। अब इसका भी कारण तापमान का परिवर्तन, जैसे कि तापमान कम हो गया और हमारी जो हवा है उसमें आर्द्रता जो है वो उसका भी लेवल कम या ज्यादा हो जाता है, और ये इतना अचानक होता है, इतना एब्रप्ट होता है, तो बॉडी इसके अनुकूल अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है, अडेप्ट नहीं कर पाती है। तो इस एब्रप्ट वेदर चेंजेस की वजह से ही ये सारी परेशानियां, जो बाकी समय एक साधारण रूप में रहती हैं और हम इनको दवाइयों के साथ चला पाते हैं, सहन कर पाते हैं, ये हमको बहुत परेशान करने लगती हैं। यहां तक कि हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है, जो हमारा कार्य है घर का या बाहर का, हमारी जिम्मेदारियां, ये सब प्रभावित होती हैं। जो पॉलिन्स हैं हमारे आसपास, वैसे तो हम इस स्थान पे देखते हैं, हमारा जो ये राजस्थान है, स्पेशली माउंट आबू, ये पूरा एक वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ पे तरह तरह के बहुत हमारी घनी वेजिटेशन है, जंगल है, पॉलिन्स की मात्रा तो असंख्य होती है। अब पराग स्तर में ये जो वृद्धि होती है, इससे भी आंखों में खुजली होना, बहुत पानी निकलना, इनका लाल हो जाना, ये समस्या बहुत आम है, और इसको एक साधारण भाषा में हम सभी जानते हैं, आंख आना कहते हैं, कंजंक्टिवाइटिस। एक और समस्या आती है जो बाहरी रूप में दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमें बहुत अनुभव होता है, विटामिन डी की कमी होना। इसके कारण भी सभी ने अनुभव किया है कि उनको हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैर में थोड़ी ऐठन सी महसूस होना, ये होता है। इसका भी कारण है कि जो हमारी हवा है उसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा है, और हम आप ये जो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज है, यानी जो घर के बाहर रहने का हमारा समय है, वो काफी कम हो जाता है। जो हमारा अल्ट्रावायलेट सूचकांक है, इसका भी एक कारण है, ये भी कम हो जाता है, या तो ये बहुत कम हो जाता है, और जब कुछ देर के लिए तीखी धूप होती है तो ये बहुत तेज भी होता है। तो एकदम से कमी और एकदम से तेजी, यही हमेशा हमारे शरीर को, हमारे मन को तरह तरह से नुकसान पहुंचाते हैं।
जो सूर्य का प्रकाश है ये अपर पर्याप्त होता है, इसके कारण ही विटामिन डी को जो उत्पादन करने की क्षमता है हमारे बोन्स में वो खत्म हो जाती है।

होती है या बहुत कम हो जाती है। अब जो हम सबने देखा है, जो हमें अपनी आंखों से भी दिखाई पड़ता है, वो है बाल का झड़ना। कुछ के तो बहुत कम होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। जिनके थोड़े ज्यादा भी हैं, उन्होंने भी अनुभव किया है कि अगर हमने बालों को कंघी भी नहीं किया है, बाल धुले भी नहीं है, सो के उठे, अपनी वर्क प्लेस के चेयर से उठे, किचन में गए, जहां भी गए, जहां बैठे, हमारे हर सामान पे हमें अपना बाल जरूर दिखाई पड़ता है। और ये हमें बताता ही है कि हमारे बाल बहुत झड़ते हैं। और बाल झड़ने की समस्या से ऐसा तो कोई है जो परेशान नहीं होता है। इसका भी कारण यही है कि ये जो हमारे रेन वाटर होते हैं, वर्षा ऋतु का जो पानी है, इसमें एसिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो जो हमारा ये स्कैल्प है, उसमें न्यूट्रिशन काफी कम हो जाता है। इनफैक्ट वो हमारे जो ये इतनी कमी है, आर्द्रता है, एसिडिटी है पानी की, इसके कारण स्कैल्प को जो पोषण तत्व मिलने चाहिए, उससे वो वंचित रह जाता है। अब हमने देखा कि ये तरह तरह की, सिर से पैर तक और यहां तक कि बाहरी रूप में ही नहीं, हमारे मन मस्तिष्क पे, हमारी भावनाओं पे, सब पर ही इस ऋतु का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है, जो कि खुशी वाला होना चाहिए, पर बीमारियों की वजह से ये परेशानी में बदल जाता है। तीन तरह के संक्रमण हैं ओवरऑल जो हमने देखा कि हमें तकलीफ देते हैं। एक है एयरबॉर्न, यानी हवा से होने वाले। अब हवा से होने वाले संक्रमण के लिए तो किसी को कुछ भी अगर नहीं भी पता है, तो सब कुछ हमें कोविड-19 के संक्रमण ने बता दिया। हम सबको मालूम है कि हवा के संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं, पहले हमने क्या गलतियां करी हैं, और किस किस तरह से हम इससे खुद को सुरक्षित बचा भी पाए हैं। तो फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये वायरल अफेक्शन, सूखी खांसी, ये सब हमारे हो गए एयरबॉर्न। जो वाटरबॉर्न है, यानी पानी के द्वारा संक्रमण से होने वाली बीमारियां, हम सबको पता है। बारिश में आए दिन हमारे पेट खराब हो जाते हैं, कोई बोलता है लूज मोशन है, कोई मरीज बोलता है कि पेट बहुत भारी रहता है, भूख नहीं लगती है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। कुछ ऐसा भी बताते हैं कि उनको इच्छा तो है, खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन उनका पेट इतना भरा होता है कि अगर वो 2-3 बाइट भी खाते हैं, उसके बाद वो खा नहीं पाते हैं। अब इसमें एक बहुत, जिसका हम कॉमन नाम जानते हैं, वो है कॉलरा। और जिसको हम बोलते हैं कि पेट से जुड़ी हुई जो भी आपको समस्या याद है, समझ आती है, वो सब हमारे पानी के द्वारा संक्रमण से होने वाली बीमारी में कवर हो जाते हैं। तीसरा है फूड बॉर्न, यानी कि भोजन के द्वारा जो संक्रमण से हमें बीमारियां होती हैं वो। इसमें हमने देखा है कि डिसेंट्री, डायरिया है, ये सब, वॉमिटिंग हो जाती है। कई बार तो कोई भी हमें वॉमिटिंग हुई नहीं है, लेकिन मन हमारा मितलाता रहता है। ऐसे मरीज हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनको इतने लंबे टाइम तक जब वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, जिसको मितलाना बोलते हैं, उल्टी जैसा मन होना कहते हैं, वो सोचती हैं कि पता नहीं हमें क्या तकलीफ हो गई। और कुछ अगर प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हैं तो वो बहुत डर भी जाती हैं, उनको लगता है कि ये जो उनकी वॉमिटिंग की फीलिंग है, उनका नौजिया है, इसका रिलेशन उनकी प्रेगनेंसी के साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। अब हमने देखा कि ये तरह तरह की बीमारियां तो हमको सबको पता है, या तो खुद हम इसके भुक्तभोगी हैं, या हमें अपने परिवार में, अपने मित्र संबंधियों में, अपने कार्य क्षेत्र पर देखने को मिले जाती हैं। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको हम ज्यादातर जानते भी हैं और हम में से बहुत सारे इनका पालन भी करते हैं, पर हम जितना ही ज्यादा नियमित रूप से इन सलाहों को अपने जीवन में उतारते हैं, उतना ही हमें सिक लीव लेने से भी छुटकारा मिल जाता है। हमने सुना ही है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम हमेशा ही इलाज से बेहतर है। हमने ये भी सुना है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमने ये भी सुना है टाइम इज मनी, तो जो समय है वो हमारा एक धन कैसे है। इन सब का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। जितना हम स्वस्थ रहते हैं, तो हमारे पैसे दवाइयों में, डॉक्टरों के चक्कर में, यहां वहां के ट्रेवल्स में वेस्ट नहीं होते, तो ऐसे भी हमारा अकाउंट में जो बैलेंस है वो बढ़ता जाता है। और जब हमारा टाइम बच जाता है, तो हम अपने उस बचे हुए समय को, जो हमने बीमारियों से लड़ने में या डॉक्टरों के चक्कर

0: लगाने में नहीं लगाया तो हमारा वो समय भी पूरा बच जाता है। तो इस तरीके से हमारा डबल, एक कहते हैं ना हम जिनको बचाना कहते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करना कहते हैं, तो हमारी डबल बचत हो जाती है। तो अब दो ही तरीके हैं बचाव के, एक तो ये है कि हम बीमार हुए और बीमार होके फिर डॉक्टर के पास चले गए और दवाई ली, उनकी सलाह और परामर्श ली और फिर ठीक हुए। दूसरा है कि हमने सावधान रह के खुद को सुरक्षित रखा तो हम उस पहले स्टेप से भी बच गए। तो जो दूसरा रास्ता है इसको हम सभी अपनाना चाहते हैं, हम सभी अपना ये पूरा प्रयास करते हैं कि हम बहुत सावधानी बरतें, इतनी बरतें कि हम बीमार ही ना हो। पर हमें मालूम भी है कि हम बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी ना ही छोटी एक लापरवाही कारण बनती है और उस एक छोटे से रास्ते से खुल के हमारे जो ये पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आ जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पर खूब पानी पीते रहना है। अब पानी कैसा होना चाहिए पीने वाला? आरओ का पानी हो या तो, और अगर आपके घर में आरओ नहीं है तो आप सुनिश्चित करें कि आप उबला हुआ पानी ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे ही पिए। कुछ लोगों ने क्या किया है कि वो पानी को गर्म, जब भी उन्हें पानी पीना होता है तो पानी को गर्म करते हैं, गुनगुना करते हैं जिसको वो आम भाषा में कहते हैं। लेकिन पानी को आपको फुल आंच में उबाल लेना है और उबले हुए पानी को ही पीना है, ये सबसे बड़ी सावधानी है। और पीने वाले पानी के साथ साथ जो हमारा भोजन बनाने का भी पानी है वो भी उतना ही साफ होना चाहिए। हर थोड़ी देर में हम अपना हाथ जरूर धोते रहें, सिर्फ पानी से नहीं बट कुछ ना कुछ जो हमारा हैंड वॉश है या सोप है उसको यूज करके। खाने पीने में हम सोचते हैं कि खूब पकौड़ियां खा लें, खूब तली हुई चीजें खा लें, बड़ा मजा भी आता है। ये सुन के भी कुछ लोग बहुत खुश हो रहे होंगे और फोन करके बोलेंगे पकौड़े या फिर कुछ ना कुछ कचौड़ियां मंगाएंगे, लेकिन ध्यान रखें इस मौसम में तली हुई चीजें भी कम से कम लें। कोई भी भोजन जो 8 घंटे से ज्यादा के समय का रखा हुआ हो, भले ही वो घर का हो, उसे बिल्कुल स्वीकार ना करें। बाहर की बनी हुई चीजें और जो भी पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं उनको तो आप बिल्कुल ही ना लें। हरी पत्ते वाली सब्जियों को ना लें, अगर किसी कारणवश लेना पड़ता है किसी डाइटिशियन के एडवाइस के अकॉर्डिंग तो आप उसको गर्म पानी में धो के कुछ देर रखें और उसके पानी को पूरा निचोड़ करके और फिर ऑयल में फ्राई करके ही खाएं। अपने आप को एक्टिव रखें, बाहर नहीं जा सकते इसका मतलब लेट के गोलगप्पे खाना और पकौड़ियां खाना ही नहीं है, आप अपने कमरे में बैठने वाली और लेटने वाली हल्के व्यायाम भी कर सकते हैं और अपना कुछ समय मेडिटेशन या प्रार्थना में जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक हमारा मन का सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक दुनिया की कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर और कोई भी शारीरिक जो हमारी ये सावधानियां हैं वो हमें बचा नहीं सकती हैं। अपने चेहरे को और हाथ को भी मॉइस्चराइज करके रखें, बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई ना लें। परिवार में किसी को कुछ हुआ था तो हमने वो दवाई ले ली, फार्मेसी पे चले गए दवाई मांग ली, ये बिल्कुल ना करें। कोविड के बाद से हम सबको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज एक बड़ी चीज के होने की दस्तक है हमें नहीं पता, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं और कोशिश करें कि आप हॉस्पिटल में ऐसे घूमने के बहाने और अलग अलग कारणों से भी ना जाएं, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना इस मौसम में ज्यादा होते हैं। अपने घर के आसपास ठहरे हुए पानी को साफ करें, घर के अंदर अजवाइन के पत्तों को अगर आप रूम में रखते हैं थोड़े से पानी में तो उससे भी आपके मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स से आपका बचाव होगा। बाहर जाना पड़े तो जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं हर्बल, आप उनको भी जरूर उपयोग करें। जितना हो सके खुश रहें, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं और खुश रहने के लिए ना किसी की परमिशन है ना कोई रुपया लगता है और जब चाहे आप खुश हो सकते हैं। मेरी इन्हीं सारी जानकारियों के साथ आशा करती हूं कि आप इनका पालन जरूर करेंगे और अगर आपको कोई भी चिकित्सकीय परामर्श चाहिए तो आप अपने नजदीकी जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो क्वैक्स नहीं है, जिनके पास एक डिग्री है, जिनके पास अनुभव है, आप उनके पास ही जाएं, उनसे परामर्श लें और उसके बाद ही कोई भी दवाई लें। नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम सेहतनामा। इस कार्यक्रम में आज की हमारी वार्ताकार थी डॉक्टर पूजा त्रिवेदी। हम आकाशवाणी की माउंट आबू केंद्र से बोल रही हैं, FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र। श्रोताओं, संध्या की 6:30 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को कई नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से दो दिन के प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रदेश को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। रेल मंत्री कल सुबह जोधपुर पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी

0: की क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: जोधपुर से श्री वैष्णव जालौर जाएंगे, वहां वे भुज नई दिल्ली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ये रेलगाड़ी राज्य के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे लघु उद्योग भारती के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। रेल मंत्री शनिवार को जयपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद वे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर की धम्बोला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से संवाद का कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध धर्मांतरण करवाने वाले तथा राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नहरों और तालाबों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और पानी का सदुपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त दुर्गेश सिंह रावल को तत्काल एपीओ करने के आदेश जारी किए। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज झुंझुनू के नारनोद गांव में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा।
2: हमारी सरकार आने के बाद आयोग का गठन किया है। आयोग अपनी कार्रवाई तीव्र गति से कर रही है और जिन आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
1: राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागौर जिले में खनन श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी और समुचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी ने नागौर के जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य खनन अभियंता को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को सभी खनन क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करने, श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और गीली खनन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने सिलिकोसिस रोगियों के इलाज के लिए हर महीने विशेष चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज लोकभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से आम जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से लेने की बात कही, साथ ही गरीब तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का कहर जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से हाल बेहाल है। लगातार पड़ रही गर्मी से आम जीवन के साथ ही पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में दिन भर धूल भरी

0: आंधी चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेज गर्मी के मद्देनजर आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 45.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार आज गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिशों से इस विलुप्त प्राय पक्षी इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इन साझा प्रयासों और गोडावण प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
1: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का।
0: वन मंत्री ने गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद श्री शर्मा ने सम स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का दौरा कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का चयन आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अरुंधति कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज बन गई हैं। इससे पहले वे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए अरुंधति को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी ये उपलब्धि युवा शक्ति के लिए प्रेरणा है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ओर से दृष्टिबाधित शतरंज प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। जयपुर स्थित कल्याण संघ परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग दो वर्गों में होगी। 3 दिन की स्पर्धा में लगभग 65 दृष्टिबाधित खिलाड़ी भाग लेंगे। जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। श्री यादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से माटी कलाकारों के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। राज्य में माटी कला के सभी कलाकारों कामगारों के लिए शिविर लगाकर आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे। श्री टाक ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 5,000 बिजली से चलने वाले चाक और मिट्टी गूंधने की मशीनों का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार और गूगल इंडिया की ओर से आज जयपुर में बिल्ड विथ एआई कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 100 से अधिक स्टार्टअप संस्थापकों, छात्रों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें गूगल के अत्याधुनिक एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने सरकारी सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर राजस्थान को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची

का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना की, वहीं 16 मई से जनगणना कर्मियों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती शुरू कर दी है। ये 14 जून तक चलेगी। इससे पहले मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम की समस्या से जल्दी ही राहत मिलने वाली है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे की ओर से 31 नए रेलवे अंडरपास RUB स्वीकृत किए गए हैं। इन अंडरपासों के निर्माण से दौसा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा, साथ ही रेलवे फाटकों पर रोजाना लगने वाले जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के सबसे व्यस्त मंडी फाटक, जड़ाव फाटक और छतरी वाली ढाणी फाटक पर अंडरपास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा खोर्रा, निमाली, जोपाड़ा, कोलवा, मानोता, भजड़ा दुब्बी, दयालपुरा बस्सी, हंसमहल बस्सी और थानागाजी के टहला बाईपास रोड फाटक सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों को भी योजना में शामिल किया गया है। क्षेत्र में RUB बनने से स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों सहित आमजन को फायदा मिलेगा। लंबे समय से स्थानीय लोग रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या से परेशान थे, जिसके कारण कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। रेलवे के इस फैसले को क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिले में भी ग्राम रथ अभियान चलाया गया। पिछले दिनों ये ग्राम रथ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। इनके जरिए किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कला जत्थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता की अलग जगाई गई। जिले की लालसोट कृषि उपज मंडी इन दिनों सौंफ की खुशबू से महक रही है। मंडी में सौंफ की आवक अपने पूरे परवान पर पहुंच चुकी है। इन दिनों लालसोट कृषि उपज मंडी में सौंफ की 3000 से अधिक बोरी की आवक बनी हुई है। इसके चलते पूरी मंडी में दिन भर जगह जगह सौंफ की ढेरियां लगी हुई दिखाई देती हैं और पूरा मंडी क्षेत्र सौंफ की खुशबू से महकता रहता है। लालसोट मंडी की सौंफ की खुशबू और क्वालिटी ने देश के साथ विदेशों तक में भी अपनी पहचान बना ली है और विदेशों से भी लगातार डिमांड होने के चलते मंडी का कारोबार काफी फल फूल रहा है। कुल मिलाकर ये मंडी सौंफ व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है और अब इसका विस्तार अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों के समकक्ष माना जा रहा है, जिससे इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में पिछले दिनों उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले भर में धूल भरी आंधी चली, वहीं कुछ गांवों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। तेज गर्मी को देखते हुए लोगों को लू और तापघात से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों ने ठंडे पेय पदार्थों का सेवन अधिक करने की सलाह दी है। उन्होंने डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सर ढककर ही बाहर निकलने और प्रचंड गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। भीषण गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम देखी जा रही है। दिन के समय पैदल राहगीर पेड़ों और टीन शीट के नीचे छाया तलाशते नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लोगों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर प्याऊ भी लगाई गई है। पिछले दिनों जिले में विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न संस्थाओं, संगठन, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक समूहों द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर जिले में अनेक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम रखे गए।

0: वहीं पुलिस प्रशासन ने संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी भी रखी। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश का दौरा सारू पधारेला, राज्य ने नुवी रेला री सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टानो काम पूरो फियो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो लोगों सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम में चुनी ची। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो प्रदेश रा दो दिन रा दौरा सारू काल पधारण रो कार्यक्रम है। वे काल समारोह जोधपुर माए न्यारी न्यारी रेलगाड़ियां री शुरुआत करेला। पेश है माना खबर नवी श्री रपट।
2: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: जोधपुर रेल मंत्री रो जालौर जावन रो कार्यक्रम है। वह भुज नई दिल्ली रेलगाड़ी ने रवाना करेला। आगाड़ी प्रदेश का कई स्टेशनों वहती निकलेला। इन पाछा श्री वैष्णव पाली माय अमृत भारत स्टेशन योजना रा तेज चाल रहा कामा रो जायजो लेवेला। रेल मंत्री रो थावर ने जयपुर माय राख्या जावन वाला रोजगार मेला माय केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा दफ्तरा माय नुवी नौकरी लाग्या कर्मचारियां ने नौकरी लागण रा कागजात देवन रो कार्यक्रम है। इन पाछे वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर उद्योग जुड़िया नुमाइंदा सा गई बातचीत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम रा तहत आज डूंगरपुर जिला री धम्बोला ग्राम पंचायत माए गांव वाला सागे बातचीत रो कार्यक्रम है। इनु पहली वे बांसवाड़ा माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। श्री शर्मा गैर कानूनी तरीकाओं धर्म बदली करावन वाला और सियासी हलचल माए शामिल हुए वाला सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। मुख्यमंत्री नहरा और तलावां री साफ सफाई सागे माही नदी रा पानी री हर एक बूंद काम लेवन सारू कहो। वह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान माथे जोर देता थका पानी रा हल्का माय खुद रे पान उबो वेवन न सब ऊंचो बतायो। मुख्यमंत्री कुशलगढ़ रा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद रा कमिश्नर दुर्गेश सिंह रावल ने तुरंत एपीओ करण रा हुकम ही दीना। राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव सारू वार्डां रा पुनर्गठन और वोटर लिस्टां तैयार करण रो काम पूरो फेंक्यो है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज झुंझुनू जिला रा नारनोद गांव माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वह कहो कि चुनाव री तैयारी पूरी कर ली रिची है। श्री पटेल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण रा बारा माए कहो कि सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रा मुजब ट्रिपल टेस्ट रपट रा आधार राजनीतिक आरक्षण दियो जावेला।
3: हमारी सरकार ने अनेक बार आयोग का गठन किया है, आयोग अपनी कार्रवाई तीव्र गति से कर रही है और जो आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
1: राज्य मानवाधिकार आयोग नागौर जिला माए खुदाई रा काम जुड़िया मजूरा माए सिलिकोसिस री बीमारी अरवारा इलाज सारू जरूरी सुबितारी कमी मत है खुद संज्ञान लीनो है।

0: आयोग रा अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी नागौर रा कलेक्टर और चीफ माइनिंग इंजीनियर ने नोटिस जारी कर गैर कानूनी तरीका खुदाई रा खिलाफ करड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। आयोग अहलकारा ने सगला खनन हलकां री भौतिक जांच करण और मजूरा ने हिफाजत तों जुड़िया साजो सामान मुहैया कराउण तय करण और सिलिकोसिस रा मरीजां रा इलाज सारू हर महीना खास शिविर लगावण बाबत ही कहो। भारतीय प्रशासनिक सेवा रा साल 2025 बैच रा सिखावण ले रिया अहलकार आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुलाकात कीनी। ई मौके राज्यपाल आ अहलकाराओं जनतारा प्रति संवेदनशील भैर काम करण सारू कहो। श्री बागड़े जनताओं जुड़िया मुद्दा माथे खास ध्यान देवण री राय दीनी। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जावण वाली विकास री योजनावां ने असरदार तरीकाओं लागू करण माथे ही जोर दीनो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए पड़ रहा जबरदस्त तावड़ा सागे उन्नो बायरो बाजनो मिनखा जिनावरा और परिंदा रा हाल बेहाल है। बाड़मेर माए आखा दिन आंधी चालनो परेशानी रो सामो करनो पड़ियो। राज्य माए लारला 24 घंटा माए सब बत्तो तापमान श्री गंगानगर माए 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। वठे तेज गर्मी न ध्यान राखता थका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री ओर जनताओं एहतियात राखण री अपील करी ची है। फलौदी माए 44.8 और अलवर और पिलानी माए 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी चियो। मौसम विभाग रे मुजब आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हलका माए मौसम साफ रहवेला। हालांकि काल राज्य रा उत्तराद आतुणी हलका माए 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार आंधी चालन रा आसार है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कहो है कि जनता री भेड़ी कोशिशां और गोडावण प्रजनन केंद्रां रे जरिए राज्य पक्षी गोडावण री तादाद माए लगातार बढ़ोतरी फैल रही है। वे आज जैसलमेर माए राखी जिया राज्य रा पहला गोडावण दिवस कार्यक्रम माए बोल रहा है।
1: और जो मुझे जानकारी दी गई है इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावन पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावन पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावन उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावन की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावन पक्षी और वन विभाग देने का।
0: ई मौके वन मंत्री गोडावण री मूरत रो अनावरण कीनो और पर्यावरण न बचावण रे बारा माए स्कूलां माए राखी जी होणा जीतण वाला रो मान कीनो। ई पाछे वे समरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क रा सुदासरी हलका रो दौरो कीनो। श्री शर्मा वठे अहलकाराओं गोडावण न बचावण सारू करी जा रही कोशिशां री जानकारी लीनी। स्कॉटलैंड रा ग्लासगो माए 23 जुलाई 2 अगस्त ताई होवण वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 माए शिरकत करण सारू भारत रा खिलाड़ियां रा नाम रो ऐलान करतियो चियो है। आमाए कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी शामिल है। वा 70 किलोग्राम भार वर्ग माए भारत री ओर रिंग माए उतरेला। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेला माए शामिल होवण वाली राजस्थान री पहली महिला मुक्केबाज वेला। वे बॉक्सिंग विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप माए तमगा जीतर देश और प्रदेश रो नाम रोशन कीनो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अरुंधति ने सोशल मीडिया संदेश रे जरिए बधाई देता थका कहो कि हमारी आ उपलब्धि नौजवाना सारू सीख देवन वाली है। अरुंधति फिलहाल भारतीय खेल प्राधिकरण साई रा पटियाला केंद्र माए सिखावण ले रही है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ री ओर दृष्टि बाधित शतरंज होड़ काल सरू फैला। जयपुर रा कल्याण संघ परिसर माए फेवन वाली 3 दिन री ई होड़ माए दृष्टि बाधित 65 खिलाड़ी शामिल फैला। आ होड़ वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग माए फैला। जयपुर रा बिचून औद्योगिक हलका माए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनायो जावेला। श्री यादे माटी कला बोर्ड रा अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी।

0: वह कहो के इनू माटी कलाकार सारू नुवी तकनीक रे जरिए नुआ काम धंधारा मौका बनेला। श्री टांक कहो के राज्य में माटी कला रा सगला कलाकार और कामगारा रा आर्टिजन कार्ड बनावन सारू बोर्ड री ओर शिविर लगाया जावेला। वे बतायो के प्रदेश में बिजली चालन वाला 5,000 चाक और मिट्टी गूंदवारी मशीना दी जावेला। इस आगे मौजूदा साल में माटी कला रा 100 प्रशिक्षक तैयार करावनो ही तय करी चियो है। राज्य सरकार और गूगल इंडिया री ओर आज जयपुर में बिल्ड विद एआई कार्यशाला राखी जी। इनमें नुआ एआई टूल्स री सिखावण दीरी जी। ई मौके सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रा शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर सरकारी सेवावां और जनता रा भलारी योजनावां री पात्र लोगां ताई बेहतर पहुंच तय करण सारू एआई तकनीक रा इस्तेमाल माथे जोर दीनो। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में उम्मीद नेटवर्क देश ने सौंपियो। ई मौके वे कहो कि जनता सारू स्वास्थ्य जुड़ी सेवावां सस्ती और आसान बनावण माथे केंद्र सरकार रो खास ध्यान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो कि उम्मीद पहल हाल ताई 3,00,000 लोगों ने फायदो मिल चुकी है। पीढ़ी दर पीढ़ी वेवन वाली बीमारियां आगे करण सारू जैव प्रौद्योगिकी विभाग री राष्ट्रीय पहल है। इरा तेत आम बीमारियां रा इलाज राय रोकथाम और जनता रा स्वास्थ्य रे बारा माय जाग जगावण माथे खास ध्यान दियो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई तई राय दे सको हो। नंबर ओजु सुन ली राव सा 1800117800। आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ली राव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश रा दौरा सारू पधारेला। राज्य ने नुवी रेला ने सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टा रो काम पूरो भयो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो लोगों सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम माई चुनी ची। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माई प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं संध्या की 7 बज रही हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्राम भारती।

राम राम किसान भाइयों, राम राम। ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को आपके रेडियो दोस्त राजेंद्र सिंह दहिया का प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, हम प्रतिदिन इस समय उपस्थित होते हैं और चर्चा करते हैं अपनी कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए अनेक विषयों के बारे में। साथ ही साथ हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि इस मौसम में हमें हमारी कृषि और पशुपालन में किस प्रकार के कार्य और नवाचार करने चाहिए जिससे हम कम लागत में अधिक लाभ कमा सकें। तो साथियों, आज भी हम इन्हीं सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे और आज चर्चा करेंगे किसानारी बाता। किसानारी बाता में हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती के फायदे के बारे में। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे उच्च गुणवत्ता के लिए सब्जियों में जैव उर्वरक का महत्व क्या है और आज

हमें जैव उर्वरकों की ओर क्यों रुझान दिखाना चाहिए, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे फसल बीमा योजना के बारे में। साथियों, हम इसके साथ साथ आपके मनोरंजन का भी पूरा पूरा ख्याल रखेंगे और आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे राजस्थानी गीत। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं प्राकृतिक खेती के फायदे के बारे में। साथियों, भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही कृषि है और कृषकों का मुख्य आय का साधन खेती है।

में अंधाधुंध उर्वरकों के उपयोग से जल स्तर में गिरावट के साथ मृदा की उर्वरकता भी प्रभावित हुई है और एक समय बाद खाद्यान्न उत्पादन न केवल स्थिर हो गया बल्कि प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी दिख रहा है और स्वास्थ्य के गंभीर खतरे भी पैदा हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के हमें समस्याओं से निपटने के लिए हमें निरंतर जैविक खेती के सिद्धांत को अपनाना होगा। जैविक खेती जीवों के सहयोग से की जाने वाली खेती के तरीकों को कहते हैं। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के उपयोग और न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। साथियों, भारतीय किसान हरित कृषि की दस्तक से ही सैकड़ों सालों से ही जैविक खेती करते आए हैं, जिसे आमतौर पर जैविक खेती भी कहा जाता है। देश भर में कई आदिवासी समुदाय आज भी झूम खेती का तरीका अपनाते हैं, जो जैविक खेती जैसा है। लगभग पिछले एक दशक से किसान समुदाय नीति निर्धारकों और वैज्ञानिक एहसास किया है कि हरित क्रांति द्वारा कृषि रसायनों को अत्यधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने की स्थिति यहाँ तक आ गई है कि इसे सीमित एवं गैर नवीकरण संसाधनों के सहारे चलाया जा सकता है। साथियों, प्राकृतिक खेती फसल उत्पादन का तरीका है जिसमें किसान मिट्टी को जीवंत रखते हुए खेती कर फसलों का उत्पादन करते हैं। गाय, बकरी, भैंस आदि के गोबर, जलीय अवशिष्ट और फसलों के अवशेषों के उपयोग द्वारा मिट्टी को स्वस्थ बरकरार रखते हैं, जिसमें कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं। जैव उर्वरक फसलों के पोषण तत्व देने में मदद करते हैं। यह तरीका अत्यधिक टिकाऊ, प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण हितैषी माना जाता है। किसान साथियों, जैविक खेती प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर अपने समस्त ज्ञान, तकनीकों और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना है। इसमें प्रकृति और खेती के बीच एक संतुलन बनाए हुए पारस्परिक खेती को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ जोड़ते हुए खेती की जाती है, जिसमें फसलें एवं जानवर विकसित और फलते फूलते हैं। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या पोषक तत्वों का इस्तेमाल वर्जित होता है। किसान साथियों, अगर हम चर्चा करें कि जैविक खेती के फायदे क्या हैं, तो जैविक खेती में भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही साथ इस पद्धति से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और जैविक खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे पानी का संरक्षण भी होता है। साथियों, इस खेती से भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है और जैविक खेती का सीधा प्रभाव पशुओं पर भी पड़ता है, क्योंकि उनको मिलने वाले भोजन में रसायन की मात्रा नहीं होती, जिससे उसके द्वारा दिए गए दूध की गुणवत्ता भी बेहतर होती है तथा पशुओं का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। साथियों, मनुष्य पर भी इसका दीर्घकालीन परिणाम होता है, जिससे कई असाध्य बीमारियों से बचा जा सकता है और अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। फसल अवशेषों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती और साथ ही साथ उत्तम गुणवत्ता युक्त फसल की पैदावार का होना भी सुनिश्चित होता है। जैविक खेती में कम लागत आती है और यह अधिक साथियों हमें लाभ भी प्राप्त करती है। कृषि में सहायक सूक्ष्म जीव न केवल संरक्षित रहते हैं बल्कि उनमें बढ़ोतरी भी होती है। साथियों, जैविक खेती की भूमिका परिस्थिति तंत्र एवं मिट्टी के लेकर लघु से लघु जीवों एवं मनुष्य तक के स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसके संवर्धन की है। इसलिए उन रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, जानवरों की दवाओं और खाद्य पोषक तत्व वर्धक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथियों, हम चर्चा को आगे भी यूं ही जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा राजस्थानी गीत। लेकिन गीत से पहले सुनिए आवश्यक संदेश।

0: Akashwani at 90.
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
3: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

के अच्छे उत्पादन में नत्रजन एक महत्वपूर्ण तत्व है। पौधे नत्रजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। मौसम में 80% नत्रजन होने के बावजूद पौधे प्रचुर मात्रा में वायुमंडल से नत्रजन नहीं ले पाते। इन जैव उर्वरकों से बीज जड़ बढ़ जाती है, जो कि पौधों को आवश्यकता अनुसार नत्रजन की पूर्ति करते हैं। इन जैव उर्वरकों को पुनः 6 भागों में हम बांट सकते हैं। साथियों, बात करें राइबोजियम का, तो इसका प्रयोग दलहनी फसलों में किया जाता है। इसके द्वारा बीजों को उपचारित करके बुआई की जाती है, जिससे पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जो वायुमंडल कि नाइट्रोजन को एकत्रित कर पौधों को देती है। इससे विभिन्न फसलों में 50 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक नत्रजन एकत्रित होती है। साथियों, बात करें जैव उर्वरकों के लाभ की, तो कम कीमत पर तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, साथ ही साथ वायुमंडलीय नाइट्रोजन फसल को उपलब्ध कराते हैं। फॉस्फोरस और सल्फेट को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं और विटामिन एवं हार्मोन की उपलब्ध कराकर पौधों की बढ़ाई जो बढ़वार है उसे भी बढ़ाते हैं। साथियों, जैव उर्वरकों के प्रयोग से 10 से 12% उपज बढ़ जाती है और कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, अगर प्रयोग विधि की बात करें तो बीज उपचार के लिए 400 से 500 मिली लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ के साथ खिलाने के बाद पानी को ठंडा करने के उपरांत 200 ग्राम जैव उर्वरकों को उसमें मिलाकर घोल तैयार करके 10 से 15 किलोग्राम बीज पर छिड़क कर हाथ से तब तक मलाते रहें जब तक कि बीज पर काले रंग की परत न चढ़ जाए। इस बीज को 1 से 2 घंटे छाया में सुखाने के बाद तुरंत बुआई करनी चाहिए। साथियों, पौध या जड़ उपचार के लिए 200 ग्राम जैव उर्वरकों को 10 से 15 लीटर पानी में घोलते हैं। इस घोलने के लिए किसान भाइयों हमें गुड़ की आवश्यकता होती है। घोलने के बाद इसे लगाते हैं के लिए निकाल लेना चाहिए और पौधों की जड़ों को 10 से 15 मिनट तक इसमें डुबाने के तुरंत बाद पौधों को रोपण कर देना चाहिए। भूमि उपचार की बात करें तो साथियों, 3 से 4 किलोग्राम जैव उर्वरकों को 75 से 100 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी या कंपोस्ट खाद में मिलाकर आखिरी जुताई से पूर्व 1 हेक्टर क्षेत्रफल में इसे छिड़क देना चाहिए। साथियों, अगर जैव उर्वरक प्रयोग के समय हम सावधानी रखने की चर्चा करें तो इसमें प्रत्येक फसल के संतुलित जैव उर्वरक का ही प्रयोग करना चाहिए। हमें अति भी किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए, अतः हमें उचित मात्रा में ही जैव उर्वरक हमारी फसल में डालनी चाहिए। जैव उर्वरकों की अंतिम प्रयोग तिथि अवश्य देख लें। 6 माह से अधिक पुराना जैव उर्वरक हमें प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जैव उर्वरकों के साथ रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं को नहीं मिलाना चाहिए और उपचारित बीज को धूप में हमें नहीं सुखाना चाहिए, उसे हमेशा छाया में ही सुखाना चाहिए। कीटनाशक एवं फफूंदी नाशक से उपचारित करने के लिए जैव उर्वरकों की 2 गुनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। साथियों, चर्चा को हम आगे भी यूं ही जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा राजस्थानी गीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: किसान साथियों, गीत के बाद चर्चा में हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे उच्च गुणवत्ता के लिए सब्जियों में जैव उर्वरक के महत्व के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की कि हम किस प्रकार से जैव उर्वरकों का उपयोग करके हमारी कृषि की आय को बढ़ा सकते हैं और हमारे खर्च को कम कर सकते हैं। साथियों, आज हमने चर्चा की प्राकृतिक खेती के फायदे में के बारे में कि हम किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपना करके हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने चर्चा की उच्च गुणवत्ता के लिए सब्जियों में जैव उर्वरक देने के महत्व के बारे में और हम किस प्रकार से जैव उपयोग बना सकते हैं और उसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने चर्चा की कि हम किस प्रकार से जो कुछ सावधानियों का ध्यान रख करके हम अच्छी उर्वरकता को बना करके हम अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। साथियों, चर्चा तो हम आपसे और भी करना चाहते हैं लेकिन अब हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें इसकी इजाजत नहीं दे रही है। तो साथियों, अपने रेडियो दोस्त राजेंद्र सिंह दैया को दीजिए इजाजत। राम राम साहब।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम भारती। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रही हैं, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या की 7:30 हो रही हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म खूबसूरत सी। आवाजें हैं अभिजीत और नीरजा पंडित की। गुलजार के बोल है, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा से अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल स्वरों में।

0: Hey, relax.
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

ये कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की आवाज़ों में फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। गुलाम मोहम्मद की बोल है, संगीत है नदीम श्रवण का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी की माउंट आबू केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की। इस गीत को हमने चुना है फिल्म दिल का रिश्ता।

गीत को हमने चुना है फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। इस गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, तर्ज है जतिन ललित की।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म विजय पद से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फजा अनवर के बोल है, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
2: लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की। इस गीत को हमने चुना है फिल्म सातवां आसमान से, जिसे लिखा है सूरत सलीम ने, तर्ज है राम लक्ष्मण की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी की माउंट आबू केंद्र से बोल रही हैं, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज के हमारे गायक कलाकार हैं मुन्ना लाल भाट। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में कार्यक्रम की ये पहली गज़ल।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली गजल। गायक कलाकार है मुन्ना लाल भाट।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए sales@jc@gmail.com।

0: यानी SALESAIRJC@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज के हमारे गायक कलाकार हैं मुन्ना लाल भाट। आइए सुनते हैं इनकी आवाज में कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम गजल। गायक कलाकार है मुन्ना लाल भाट।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा है।
1: भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक

0: बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: अमेरिका एंड इंडिया,
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।

0: द मिनिस्ट्री ऑफ
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ

0: डॉक्टर मनोज शिरुरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरुरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 9 बज रही हैं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए

0: फिर वही रात है, रात के इस पहर। ये गीत अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।

0: भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

रूना लैला की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे घरौंदा फिल्म से, जयदेव का संगीत था। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आपने आज का ये संगीत का सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है। प्यार सर्व

तात्कालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदिति चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्र।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन।

0: भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया, बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया। हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां, एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

पलकें काजल से जब बोझल सी हो जाती हैं, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती हैं, माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती है, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

0: उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होते ही होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।
1: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।

বৈশাখু চকান্ত তাই সরমীয় আমার মিও দো বৈশাখু চকান্ত।

0: amore mio, dove sai tu? Hey, क्या गा रही?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा,
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का माउंट आबू केंद्र है, FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र

को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।